0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: तजारत ही इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है। वो कहता है जब मैं एक मिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिस्ट्री का काम करूंगा, जब मैं कूपर फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम कर सकूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
1: तो
0: ज्यादा
1: चलिए
0: मसालों को
1: अदनान
0: क्या
1: आते हैं,
0: करूंगा।
1: शाह साहब भी सुने आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समैरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार सब देखे नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना तो एब्रिस्लोन का जो एब्रिस्लोन से बंदा निकल गया है, रहता मैचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम होती है, एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो हडिखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्रिस्लोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्रिस्लोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्रिस्लोन से। क्यों नहीं आ
2: नहीं
0: सके?
2: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पे डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो सीरत सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, रूल लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इसमें अगर आप वजाहत कर दें, साथ
2: अच्छा
1: साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं।
0: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने कि बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो ऑर्डर देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना केलन वो दो हिस्से में होती थी रेकियो, अब वो एक रेकियोन में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है, तो आप ये कर लें कि पहले आप कह दें ठीक है मैं 4 साल

0: ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुर्बा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका। ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में इतनी जॉब होती है ना, वो इसने 3-4 मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको अब बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी कुमाऊँनी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें भी पता है, मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री भी तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये माचन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको ली है। कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपका उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूओ में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती हैं। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: शाह साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपने रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है, मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलकेली उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं हम कि वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट कोर्ट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी, तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाईएस्ट कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते थे, आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो, हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना है, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं, मुझे गाय पूछते हैं, मुझे कहते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं,
0: मैं भी
1: मेहरबानी
0: इंसान
1: आपकी, आप टाइम
0: हूँ।
1: निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब, ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी, और मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही, हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है, मेरी बेटी है, वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं, तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है, आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलना है। मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन। हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथवाला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है। इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, कुछ देर बाद
2: यही
0: आप।
2: यही यही अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे पुलिस सेल्स के बल निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे, जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ़ुज़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया है। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ ये रास्ता है राजा साहब। देखिए वो जो जो दो दो दो अलग चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये 1-2 फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना वो ये था कि जब आप कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, शाह साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो
2: जी,
0: आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे ट्रांसफर के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटरग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो
1: चले,
0: जो
1: ये आने
0: जो
1: वाला वक्त
0: इसको
1: बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
2: जी इदरान, बहुत बहुत बहुत खुशी हुई है, और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जी शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं, और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली, अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं, तो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का, हम दोनों को फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको।
1: अल्लाह
2: हाफिज।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
2: जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
1: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो सवाल जवाब की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समय हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: حسن بخاری شاہ صاحب. شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو, جتنے آپ کے لسنر ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. تو راجہ صاحب موسم تو واقعی ہی مری والا موسم ہے, بہت پیارا موسم ہے, نہ اتنی گرمی ہے نہ اتنی سردی ہے, کبھی دھوپ نکلتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ رنگ رنگیلیاں جو ہیں موسم کی یہ بڑی اچھی ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ ان ہمارے جیسے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جب گھروں میں آپ اے سی لگائیں گے گھروں میں آپ کولر لگائیں گے تو اس سے بجلی کا بل بہت بڑھ جاتا ہے, اور خصوصی طور پہ گرمیوں میں بعض لائل جو ہیں جو نئے مکان بنے ہوئے ہیں وہ اتنے ہوادار نہیں جتنے کے پرانے بلڈنگز ہیں, تو اس کے اندر کافی مسائل آتے تھے, لیکن ان کا خرچہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور یہ قدرتی وسائل جو ہمیں مل رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ کچھ دن ایسے آئیں جہاں دھوپ آئے, تاکہ اب بچوں کو جو چھٹیاں ہیں اور سارا کچھ موسم ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ باہر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب آپ نے بجا فرمایا, تو یہاں اب ڈنمارک کے کیا حالات ہیں, لوکل حالات کی بات کرتے ہیں, چونکہ ہم لوکل ہیں تو لوکل بات چیت زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو شاہ صاحب اس وقت موسم کا تو آپ نے بتا دیا, پانی کا میں نے ذکر کیا تھا کمیونوں میں پانی جو ہے, اور اب کوپن کمیون میں بھی جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا کہ پانی یہاں بھی گندا ہو گیا. وجہ کیا ہے, کنسٹرکشن کی وجہ سے یا پائپ کھودے جا رہے ہیں ٹھیکیدار جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے, کیا بات ہے؟
1: سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہاں پہ میٹرو بنی تھی آج سے کوئی 25-26 سال پہلے میٹرو کی جب کھدائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی انجینئرز اور سائنٹسٹ جو فوسکا وغیرہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گرونڈ وینٹ ہے جو ہمارا زمینی پانی ہے وہ زریلا ہو جائے گا, آپ یہ اس قسم کی بات نہ کریں. لیکن 1972 میں جب 1972 میں جب ڈنمارک یورپین یونین کا ممبر بنا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ان کو کلچر کی صورت میں جو ان کو پیسے ملے کہ آپ اپنے جو ہے ایگریکلچر اس کو ٹھیک کریں, تو انہوں نے کیا کیا, وہ ایگریکلچر کو انہوں نے پیسے اتنے نہیں دیے. یہ میں بڑے باوسوخ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس وقت سیاست میں نیا نیا تھا اور میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو کافی عرصہ پیسے ملتے رہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ایگریکلچر ہے اس کے اندر جو آپ کے زہریلے مادے سپرے ہوتے ہیں جو آپ کھادے ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کے پینے کے پانی میں شامل ہو رہی ہیں. آپ جو گندگی ہے انسانی گندگی ہے وہ بھی پانی کے اندر شامل ہو رہی ہے, تو آپ اس کا کوئی حل کریں. لیکن پرابلم یہ آئی کہ جب آہستہ آہستہ حکومت جانی شروع ہوگی تو پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ شروع کر دیا ان ماندہ, اور 90s اور 2000 میں یہ شور بہت ہی جس کو میں ڈینش زبان میں کہتا ہوں نیو کتابلہ انکامنے کتابلہ, نیو کتابلہ ہم لوگ ہیں جو ان ماندہ یہاں پہ آئے اور گامنے کتابلہ وہ ہیں جو ڈینش یہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کا کلچر. لیکن انہوں نے بالکل اپنے جو ذاتی اور ہمارے جو یہاں کے اندرونی مسائل تھے اس کے اوپر بالکل انہوں نے روشنی نہیں ڈالی نہ اس کے اوپر بات کی. ابھی جب یہ ابھی نیولی الیکشن ہوئے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ آپ کے ریڈیو پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پانی جو ہے یہ گندا ہے, اور گلوسٹوپ اور کے جو بورنگ ہے اس کا پانی جو البسٹروم میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ بھی پانی بہت زہریلا ہے. لیکن کمیونوں نے ہمیشہ یہ کہا جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں, لیکن ان کے پاس مکان بنانے کے لیے نیل جب ان کے پاس پرانی لائڈی ہلز ہیں لوگ خوش رہ رہے ہیں تو انہوں نے کرایہ بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا, اس میں سیاستدان بھی شامل ہے اس کے اندر بیوکریٹی بھی شامل ہے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ڈائریکٹر ذرا وہ بھی شامل ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ بجائے ہماری صحت پہ توجہ دینے کے بجائے پینے کے پانی کو توجہ دینے کے اور لوگوں کی میڈیسین کو سستا کرنے کی بجائے इन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी फर्मों को लोन देना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे फ्लैट बनाए, और वहां पे उसको महंगा तरीन कर दिया गया। गर्ज यह है कि इन्होंने अभी तक जो तवज्जो है वो हर कम्युनिटी यह है कि मैं नए से नए हम तमीरात करें, नई से नई चीजें हम सामने लेके आए, लेकिन पीने का पानी जो है लोगों के बाल गिर रहे हैं, लोगों के जो है ये इतनी ज्यादा जो है खाद जो है ये तो अभी पिछले पिछले दो दिन पहले DTU जो है वहां के एक प्रोफेसर ने जो स्पेशल पानी के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर तहकीक कर रहे हैं उन्होंने ये अलार्मिंग दी है दोबारा कि भाई हमारा जो पीने का पानी है ये कितना गंदा है। हालांकि मैं खुद पानी उबाल कर पीता हूँ और पानी को उसके बाद फिल्टर करता हूँ, काफी फिल्टर लगाकर उसको फिल्टर करता हूँ पानी को, और मैंने उसकी फोटो जो है वो DTU में भी भेजी है और मीडिया में भी लगाई और एक्स में भी लगाई कि हमारे पीने के पानी में कितने प्लास्टिक के जरात और दूसरे जरात जो है आप गंदगी देख सकते हैं कि एक दफा का उबला हुआ पानी कितनी गंदगी जाहिर कर रहा है, तो आपको कितनी दफा हर दफा ये, और अगर ये डायरेक्ट हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं तो इससे हमें अंतड़ियों की बीमारियां और इसी तरीके से हमें दूसरी बीमारियां जो है लिवर की और ये लग रही है, और इसके ऊपर डॉक्टर्स जो है वो उनकी तादाद बहुत कम है डेनमार्क की। बाद लोगों को गले का कैंसर हो रहा है, बाद को स्टमक का, और ये भी इंश्योर जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं तजर्बाकार हैं हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खुदारा इंसानी सेहत के बारे में आप ख्याल रखें, लेकिन अभी तक कोपेनहेगन कम्यून में हो जाए आप या एल्बर्टसोन कम्यून में हो जाए या किसी भी वेस्टाइन, इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की गई, और अभी तक लोग जो है ये खाद जो मसनू खाद है जो कि है ही आर्टिफिशियल खाद जो हम फूलों में डालते हैं दूसरी जगह, इन खाद इस खाद को हम जब बाहर जमीन पे फेंकते हैं तो वो बारिश के पानी के साथ वो जमीन के अंदर हल हो जाती है और फिर वो आस्ता आस्ता हमारे पीने के पानी के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये चीजें जो है ये खत्म करने के लिए हमें अपने कम्यूनों को लिखना चाहिए, हमें इन पे प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो इस वक्त 30% स्टमिक कैंसर है जो जिसकी तादाद डेनमार्क में बहुत ज्यादा है, अगर यही हाल रहा तो कल को हमारी यंग जनरेशन जो है, आपको पता है कि 1930 तक यहाँ पे जो है वो 66,000 यंग आदमियों की कमी महसूस होगी डेनमार्क के अंदर, तो अगर यही हालत रही और हमारे लोग जो है वो बीमार होते चले गए तो यहाँ पे कौन काम करेगा, क्योंकि हेल्थ की जो है ये बहुत बड़ी एक जरूरत है, हमें यहाँ पे हेल्थ पे बात करनी चाहिए, हमारे जो काउंसलर हजरात हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको ओपनली ये बात करनी चाहिए, उनको अपनी पार्टी, क्योंकि यहाँ तो सब पार्टियों ने बात की थी इस इलेक्शन में, पानी को सर्वश्रेष्ठ रखा गया था कि पानी जो है वो 30% है, हालांकि यहाँ का 70% पानी जो है वो गंदा पानी है। जब मैं ये कह रहा हूँ सर ये 70% है तो फिर ये पानी तो 30% कहाँ साफ पानी मिल रहा है, कौन सी कम्यून के अंदर ये 30% फिल्टर पानी जो है वो साफ आपको मिल रहा है। मसला ये है नहीं कि ये बाहर बड़े बड़े पाइप खोद कर उनको नए डाल दें, मसला ये है कि जो पाइप आपके घरों में आ रहे हैं क्या उन घरों के पाइपों को भी ये चेंज कर रहे हैं, कभी आप देखें कि इस पाइप को पुराने पाइप को आप काट के देखें जो आपके घर के अंदर लगे हुए हैं तो आपको उसके अंदर इतनी खैलक और इतनी गंदगी मट्टी जमी हुई नजर आएगी कि आपको पानी उस प्रेशर से नहीं आता जिस प्रेशर से पहले आने चाहिए, और वो मट्टी जो वो खैलक जो है वो आस्ता आस्ता आपके जिस्म में और आपके बालों में और आपकी सेहत पे बहुत बड़ा असर कर रहा है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम जाकर बोले, तंजीमात के साथ बोले, हमें चाहिए कि हम इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमारी हमारी ही नस्लें हैं, हमारे ही लोग हैं, और इन लोगों को जो है अदारियां लिखने चाहिए, इनको बोलना चाहिए। इस वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया जो है ये बहुत ही एडवांस है, लोग इनको रास्ते में चलते हुए भी सुनते हैं, तो मैं अपने यंगस्टर से ये امید رکھوں گا, خصوصی طور پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر شبیر ہو گیا, دوسرے ڈاکٹرز ہمارے جتنے بھی ہیں, ان سب کو چاہیے کہ آپ کے ریڈیو پہ آئے, دوسرے ریڈیو پہ جائیں, جہاں پہ بھی ان کو میڈیا میسر ہے, کم از کم آپ اپنی زبان میں لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ حقیقت ہے, اور یہاں کا پانی جو ہے آپ کس طریقے سے اس کو ابالیں, اور کس طریقے سے اس کو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو فلٹر کر کے آپ وہ پانی پیئیں. پلاسٹک کی بوتلیں, پلاسٹک کی چیزیں آپ بالکل نہ رکھیں, کیونکہ پلاسٹک جو ہے یہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, وہ ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پانی جب آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, جب ان کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے جسم میں خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو کینسر جیسی بیماریوں میں.
0: جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں معلومات دیں فلاں معلومات دیں, ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, جو تھوڑا بہت ٹائم ان کے پاس بچتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو لیکن جو پینشنسٹ لوگ ہیں ان کے پاس تو جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اگر ٹائم شیئر نہیں کرتے تو کام کرنے والوں کے لیے تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
1: دیکھیں جی, جو آپ ہیومن کے لیے کام کرتے ہیں, ایون آپ جانور کے لیے کام کرتے ہیں, یہاں پہ تنظیمات بنی ہوئی ہیں, وہ بھی لوگ جو ہیں فری ولی, اب تو پاکستان میں بھی جانوروں کے تحفظات کے لیے آرگنائزیشنیں بن چکی ہیں, لوگ اس کے اندر لڑکے عورتیں مرد سب کام کر رہے ہیں, تو یہاں ڈنمارک میں بھی ہیں, تو ہمارے لوگوں کو فری ولی آنا چاہیے, اگر وہ پانچ منٹ کے لیے ریڈیو پہ اپنا میسج جو ہے وہ دے دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, بلکہ کل کو ان کے اپنے بچے جو ہیں, ان کے اپنے اولاد جو ہے, ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی, ان کے پاس انفارمیشن ہو جائے گی کہ ہم نے اس گندگی سے اس طریقے سے کیسے بچنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایل بل ہے یہ گندگی نہیں پھیلاتی, تو اب آپ دیکھیں تو بہت سارے یونیورسٹیز جو ہیں دنیا بھر کی جو مشہور یونیورسٹیز ہیں ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا 10-15% کا فرق ہے کہ ایل بل جو ہے اس کی بیٹریاں بھی اتنی ہی زیادہ گندگی پھیلاتی ہیں جتنی ڈیزل گاڑیاں پھیلاتی ہیں. تو اب تو یہ
0: سب اگر آپ بیٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹی کونسلز یا جو بھی پارلیمنٹ سے یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی کہ ان کی بیٹریز جو ہیں وہ سستی کی جائیں, اب گاڑی میں الیکٹرک جو گاڑی ہے اس میں بیٹری کی زیادہ قیمت ہے, باقی چیزوں کی اس طرح کی قیمت نہیں ہے لیکن یہ بیٹری کی قیمت زیادہ ہے, جب بیٹری بندے جو تبدیل کراتے جہاں تک انفارمیشن ملی ہے وہ لاکھ یا لاکھ سے اوپر کی بیٹری آ جاتی ہے, تو شاہ صاحب اس کی چیزوں کو سستا کرنا چاہیے, جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو اب سستا کیا جا رہا ہے, ممز وغیرہ جو ہے اس پر ریبیٹ دی جا رہی ہے, تو شاہ صاحب یہ چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے, پینشنسٹوں کے لیے باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے, بلکہ عام شہری کے لیے بھی ہونا چاہیے, تو یہ پارلیمنٹ میں کمیونز میں جو قانون قاعدے بنتے ہیں تو زیادہ تر یہ لوگ اپنے سہولیات کی طرف جاتے ہیں.
1: دیکھیں جی, اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہے, اور یہاں کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ تو بالکل ہی غلاظت میں چلا گیا, میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی گندگی میں چلا گیا. آپ یہ پڑھیں گے کہ
0: مثال دیں,
1: اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی کل کے اخبار میں تھے, میں نے آپ کو وہ کٹنگ وغیرہ بھیجی ہے, ادنان کو بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ یہاں پہ ملیارڈ جو ہے, ملین نہیں ہے, اربوں کھربوں میں جو ہے وہ ٹیکس فراڈ ہو رہے ہیں, ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اور ان کو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس ڈال رہی ہے لوگوں کو. یہاں پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی حالت جو ہے ٹیکس کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہے, لیکن اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو پھر آپ کی موجے ہی موجے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فیملی کو ڈسٹرائی کرنے والا, فیملی کو علیحدہ کرنے والا, بچوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے
0: 18 ٹھیک کون کرے گا,
1: یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, یہ کمیون کے اندر جو کونسل بیٹھے ہوئے یہ بتائیں کہ ہمارے جو جن سے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی تکلیفات کیا ہیں, جب یہ اپنے چاچا مامے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ینگ ہیں جن کو کسی چیز کا تجربہ نہیں, جن کو فیملیز کا تجربہ نہیں, وہ ان سے کیا بات کریں گے, ان سے کیا کلیئر کریں گے, बात होती है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, अब मुझे रेडियो पे काम करने का तजर्बा नहीं है, आप रेडियो को जानते हैं, आप हर किस्म के प्रोग्राम में खड़े होकर रेडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं एक तजिया पेश कर सकता हूँ, मैं सियासत पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीज नहीं कर सकता जो आप इसी तरीके से जो लोग काम को जानते हैं उनको इन्वाइट किया जाना चाहिए, उनसे बहस की जानी चाहिए। सबसे इस्लाम में सबसे बड़ी चीज जो है वो है डिस्कवरी।
0: शाह साहब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 30,000 के करीब पाकिस्तानी आबादी है जो सामने सामने कागजों में या सर्च करने से हमें पता चलता है। तो शाह साहब इतनी बड़ी आबादी में कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, जब इलेक्शन होते हैं आपको भी अंकल जी शाह जी आप भी सब कुछ बन जाते हैं, सारे अंकल बन जाते हैं, उसके बाद जिस सियासतदान के पास टाइम नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो सियासत में आता क्यों है और हम लोग उनको वोट क्यों देते हैं।
1: देखिए जी यहाँ पे मैंने अगले दिन भी सुना था जाद शाह साहब, जाद बखारी साहब ने भी ये बात की थी और आपके साथ कामरान थे स्वीडन से वो भी ये बात कर रहे थे, लेकिन ये तो हमने आपके रेडियो पे 2016 से ये बातें करने आई हैं कि भाई आप बॉलर्स में बैठे हैं, पहले आपकी तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए, आपको जरूरी नहीं यहाँ आपकी फैमिली रहती है आप वहां से वोट लें, आप किसी ऐसे इलाके में भी खड़े हो सकते हैं जहां पे आपके पार्टी की सीट निकल सकती है और आपको मैंडेट मिल सकती है। सबसे बड़ी गलती हमारे सियासतदान ये करते हैं कि ये अपनी बॉलेंस शो नहीं करते। बॉलेंस शो करने का मतलब ये होता है कि आपके साथ जितने लोग हैं, पाकिस्तानी है, टर्किश है, किसी भी डैनिश है, इनको इकट्ठा करके तो अपनी जो आपकी जमात है उसको शो करें कि भाई देखें हमारे पीछे कितनी बड़ी पावरलेस है जो हमें वोट दे रही है, हम इसके साथ हैं, हम इनको लेके चल रहे हैं, हम इनकी आवाज बन रहे हैं। इन लोगों को यही पता है कि यहाँ से अगर तुकीर शाह खड़ा हो गया तो यहाँ से कोपनहेगन से राजा कपूर खड़ा हो गया तो हमने इनके खिलाफ 10 बंदे खड़े कर देने हैं जिसको किसी चीज का पता नहीं, किसी इलम का पता नहीं। देखिए एजुकेशन इज नॉट अनफ। मुझे याद है मैं अभी छोटा था तो किसी सरदार की हुकूमत थी पाकिस्तानी में पेशावर के अंदर सरहद के अंदर, तो उस वक्त एक ही होता था वो अपना पाकिस्तान सारा एक ही होता था, मसलन उस वक्त सरहद सूबा नहीं था दूसरे, तो वहां से सरहद से इन्होंने जो आज केपी के है वहां से एक 3 जमात पढ़ा हुआ वजीर तालीम लिया गया और उसकी तालीम का जो था उसका जो निजाम था जो उसने चलाया वो दूसरों से बेहतर था और वो हिस्ट्री में आया, अखबारों में आया, दारिया लिखे गए उस वक्त,
0: क्योंकि उसने तालीम हासिल नहीं की थी, उसको पता था तालीम क्या होती है।
1: यही बात है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम PhD कर लें, MBS कर लें, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हमने अपनी जॉब को ज्यादा टाइम देना, जो ये सियासत है ये हमने अपने वो शो के लिए रखी है। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं लेकिन मैंने गाड़ी खरीदी है तो मैं जाके लीजिंग पे एक बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ और मैं ये बताता हूँ ये मेरे पास गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी असल में मेरी नहीं, वो तो मैं तो लीजिंग पे ली है, एक फर्म की गाड़ी है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ,
0: लेकिन ये चीजें नहीं तो बन जाती है ना।
1: नहीं शो नहीं माननी चाहिए इंसान को। इंसान को देखे अगर आपका भाई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा इस चीज पर काम कर सकता है, वो टाइम दे सकता है तो उसके पीछे जाए। यहाँ पे
0: शासन मेरा आपसे सवाल बनता है, आप जैसा समझदार आदमी, आप जैसा तजुर्बेकार आदमी, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप इस सियासत में जो है अपने आप डॉक्टर, मैं कह सकता हूँ आपको सियासतदान नहीं कह सकता, डॉक्टर कह सकता, सियासी डॉक्टर कह सकता हूँ। शाह जी आप जैसे लोग भी अगर लोकल सियासत से मुराद है लोकल पाकिस्तानी पार्टियों में जो है असर रसूख जो है वो आपका नाम लेकर बताते हैं तो उसके आप सारी पार्टियों को देख लें, अगर उन पार्टियों की हम सब ने मिलजुल कर सियासत करनी है तो फिर डैनिश पार्टियों को या कम्यून को गिला करना या पार्लियामेंट को गिला करना तो मैं नहीं समझता शाह साहब ये मुनासिब है।
1: यार बिल्कुल सही बात करें भी, यार देख लें SF में क्या हुआ है, SF ने उसी मशीन को जो उस पार्टी से कुछ अर्सा पहले निकाला गया था जिसके ऊपर मी टू का इल्जाम लगा था, जैसे वो हमारे मेयर थे अपना सोशल डेमोक्रेट के बड़ा शरीफ आदमी था फ्रैंक आनरसन उसके ऊपर और रेडिकल वेंचर के, तो उसको निकाला गया था। तो अब SF के इस मिनिस्टर ने फोरमैन ने उसको दोबारा चुन लिया और उसकी वजह से पार्टी में इख्तलाफ हो गया है। तो ये जो इख्तलाफ होता है, ये इख्तलाफ राय जो है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमारे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस पार्टी को छोड़ दें, नहीं, आप वहां पे पावर शो करें, आप अपने पीछे बंदे लेके जाएं, आप अपने साथ उनके मेंबर बनाए बंदों को, उनको कहें जी आए साल के बाद आपने पैसा देना, आप आए तो जी कम से कम अगर कोई नहीं बनता तो अपने ताए चाचे, अपने मामे, अपने बाप को बनाए। अभी जो आपने बात की थी असल के इलेक्शन में कमी क्या रहेगी, वो कमी जो पिछले इलेक्शन में हमारे क्यों नहीं हुए कि इन्होंने जब ये सुना कि भाई चंद लोग हमारी हिमायत कर रहे हैं बस अब हमें कोई जरूरत नहीं, तो इन्होंने गलत जगह जाके गलत वोट मांगे, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों से वोट मांगे और ऐसे लोगों को साथ लेके ये कि जिनको दूसरी जगह से तीसरी जगह कोई जानता नहीं था, फिर इनको तजर्बा नहीं था कि हमने कैसे लेना है, ये अपनी तरफ से सिर्फ एक इलेक्शन लड़े हैं एक काउंसलर की हैसियत से। देखिए जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं पहले आपने ये देखना है कि आपके मुकाबले में कोई ज्यादातर फॉरनर तो नहीं है। अगर आप देखते हैं कि आपके मुकाबले में आपकी ही जगह पे 7-8 फॉरनर खड़े हैं, अभी जोहेर का आप देख रहे हैं, जोहेर की फर्स्ट तो उसको पहले ही पूछना चाहिए था कि आपने सोशल डेमोक्रेट के साथ आपने तलक रखा हुआ है, आपने फोन की हुई है फ्रंट फ्रंट पार्टियों के साथ, क्या हम ये पार्टी फॉर्मर से पूछता कि क्या हम यहाँ पे 2 या 3 मंडेट निकाल सकते हैं, अगर वो कहते नहीं हमने एक ही मंडेट निकाली है तो इसको चाहिए था वो ड्रॉप कर देता, किसी और जगह से इलेक्शन लड़ लेता, वेलबी से लड़ लेता, कोपनहेगन से, कई और जगह से उसको कहता मुझे टिकट दे दे, क्योंकि जो आपका नेशनल फलके सिंह का इलेक्शन है इसका आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आप हो आप जाके उस हल्के में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इन्होंने गलती की, एक जगह से ही 10-15 जो है वो फॉलोअर खड़े हो गए, एक दूसरे के वोट इन्होंने तोड़े। तो ये इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता है जहां आप सियासत में खुद समझें और ये देखें कि आप अपनी पार्टी में इतने
0: आप समझते हैं कि जिन जिन ममालिक से लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात, अपने मुल्कों की अपनी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, तो शाह साहब क्या वो सियासत डेनमार्क में की जा सकती है?
1: बिल्कुल नहीं की जा सकती। यहाँ पे अगर आपने सर्वाइव करना है सबसे पहले आपको ग्राउंड लॉ का पता होना चाहिए। आज मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा है, मैं रेडियो पे भी कहता हूँ कि इनका साहब ने कहा है कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो यहाँ की वर्दी है वो हम डायरेक्ट रखना चाहते हैं। तो मैंने उसको सवाल किया है, मैंने उसको कहा कि देखो डेनमार्क के अंदर क्या तुम्हारा कल्चर है डिस्क्रिमिनेशन का, या वो डेनिश कल्चर जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन रखता है, जो कि बड़ा इंसानी हमदर्दी वाला, कौन से कल्चर की तुम बात कर रहे हो, कौन सी वर्जियत की तुम बात कर रहे हो। बात होती है कि जब आप अपने कॉलम लिखते हैं या अपनी कोई चीज लिखते हैं तो उसके बैकग्राउंड के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। ये लॉज को आप फॉरगेट कर जाए, लॉ तो जो है ये एक फोर्स ले है, ये एक वक्ति है, ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आपको बहुत बड़ी ताकत चाहिए पार्लियामेंट को। और ये जो हमारे सियासतदान ये कहते हैं जी नहीं हम इस चीज को नहीं, देखिए आपका रेडियो वाहिद रेडियो है जो सबसे पहले डेनमार्क के अंदर जिन्होंने ये आवाज उठाई कि भाई यहाँ जो कम्यूने हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो पार्लियामेंट से भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या हमारे चंद लोग बोले समझे इस चीज को। लेकिन अब फिर वही हाल हो गया है कि इतना अरसा हो गया है इलेक्शन को, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई अवाम में आके ये नहीं कह रहा कि कल को आपकी क्या पेंशन होगी। देखिए इस वक्त जो नई गवर्नमेंट बनी है इसको कोई ख्याल नहीं कि इस महंगाई के वक्त के अंदर कोई पेंशनिस्ट जो है वो फैमिली कितनी दब चुकी है, क्या उनके पास इतना सरमाया है कि वो गुजारा कर सके। यहाँ पे देखे फुस्केली कल्चर है डेनमार्क के अंदर भी, जैसे हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर है, तुर्की में मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ नस्लें लोग रहते हैं, इसी तरीके से डेनमार्क के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ कल्चर रहते हैं और उनका अपना जो कल्चरल है वो एक डिफरेंट है, उनका अपना एक अलग कल्चर है। आप वेस्टर्न गो में चले जाए वहां पे ईस्टर्न गेट के लोगों का अपना कल्चर है, लेकिन आप क्रिश्चियानिया में जाए उनका अपना कल्चर है, वो अपनी मनवाते हैं। इसी तरीके से आप गैंगटॉक के अच्छे इलाकों में चले जाए वहां के कल्चर जो है वो डिफरेंट है। तो ये बात क्या नहीं जी हमारी पूरे डांडवा के कल्चर को ये मुसलमान आ गए ये तबाह कर रहे हैं, इसमें नलायकी किसकी है? इसकी नलायकी यह है कि हम मुसलमानों में वो कुव्वत नहीं है कि हम
0: मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रोक रहा हूँ, मैं एक सवाल को रेज करता हूँ और इसको आपने जवाब देना है। शाह साहब देखे ना कि यहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, दूसरे ममालक के भी लोग बसते हैं, उनकी कितनी सियासी जमातें हैं, इसी तरह हमारे मजहबी भी जो है वो तलुकात हैं, मजहबी जमातें भी हम बनाते हैं, बनी हुई भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक काम हो रहे हैं, जमहूरी तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन शाह साहब बताएं मुझे, यहाँ जो सोशल डेमोक्रेट की पार्टी की फोरमैन है वो कहाँ रहती हैं, वो पार्टी कहाँ से चलती है, ये डेनिश पीपल्स पार्टी है ये कहाँ से चलती है, इसी तरह SFA रेडिकल वेस्ट है, इन सो जितनी भी कार्ड पाकिस्तान डेनमार्क की सियासी जमातें ये यहीं से ऑपरेट होती हैं, यहीं से सारा निज़ाम चलता है। तो जो पाकिस्तानी सियासी जमातें जिनके पीछे सारे लोग भागते हैं, हम जमहूरियत पसंद है, हम जमहूरियत की नफ़ी नहीं करते, उनकी जो चलती है पार्टी, उनके जो लीडर हैं या उनके गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? सब नाज़रीन हमारा रابطہ जो है वो मुनक़ط हो गया, दोबारा हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो जो ही हमारा रابطہ बहाल होता है तो हम तुकीर शाह साहब के पास दोबारा चलेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात कर रहे थे कल्चर की बात कर रहे थे, दूसरी बातों को भी जो है निशानदेही करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपनी राय भी देते रहते हैं, खुल कर बोलते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी करके वो बात करते हैं। जो शाह साहब हमारा रابطہ कट गया था
1: जी, वो आप सवाल कर रहे थे तो एकदम ही आपकी तरफ से वो रास्ता खत्म हो गया, तो किसी ने कोई शरारत की होगी, ये तो नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं। अब सवाल करें अपना।
0: शाह साहब सवाल मेरा ये था कि हम सियासत की बात करते हैं, यहाँ देखें जितनी भी सियासी जमातें हैं डेनमार्क की, बड़ी बड़ी जमातें हैं, सोशल डेमोक्रेट होगी, SF होगी, रेडिकल वेंस्ट्रा होगी, वेंस्ट्रा होगी, इनिस्टन होगी, जितनी भी डिया डेनमार्क की सियासी जमातें, इनके लीडर, इनका सारा सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ से लोग बनते हैं, यहाँ से लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, कम्यूनिट में जाते हैं, पार्टियों की तरह नामजद किए जाते हैं। जिस पाकिस्तानी सियासत की मैं बात करूँगा खासकर, चूँकि बाकी दूसरे मुल्कों का हमें नहीं पता उनकी किस तरह की सियासी जमातें, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर आपके नॉलेज में तो आप बता दीजिएगा। तो शाह साहब जितनी यहाँ की पाकिस्तानी जमातें, इनका सिस्टम जो है यहाँ चलना चाहिए ना, लेकिन इनका सिस्टम यहाँ नहीं चलता, इनके गुरु बाहर बैठे होते हैं।
1: देखिए जी, ये जो पाकिस्तानी सियासत है ये अपने इलाके में अपने फैमिली को अपने दिखाने के लिए कि हमारे पास फलानी फलानी पार्टी के हम मेंबर हैं, पोजीशन है, और बैसिस को यहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के तंजीमात बनी रहती है। मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूँ और अभी भी हिस्सा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो मसाइल हैं जो आपने रेज किए हैं, यहाँ आप देखें जमहूरियत ये होती है कि सोशल डेमोक्रेट के अंदर जिससे हुकूमत बनी है इसके अंदर प्रॉब्लम जा रही है, सवालात उठ रहे हैं, इसी तरह SF में अब सवालात उठ रहे हैं। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, मैं अपने यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ जो सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं, जो इस सियासत में है, कि यहाँ आप उसी जमात के अंदर रह के अगर आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके जो वोटर्स हैं, अगर वो 50-100 के करीब उस पार्टी के मेंबर बन चुके हैं आपके कहने के ऊपर, यानी कि वो आपके हल्के से बने, दूसरी जगहों से भी, दूसरे हल्कों से भी बन सकते हैं, तो आपकी पावर होगी पार्टी के अंदर। फिर पार्टी के अंदर आप खड़े होकर जिस तरह डायरेक्ट सवाल करते हैं आप भी सवाल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई हमारे इलाके में हमारी चीजों में अब कम्यून जो है इसके अंदर जो पानी का प्रॉब्लम है, या इसके अंदर जो सहूलियात है, जो मेडिसिन और दूसरी चीजें जो है, अब देखें कि कानून क्या कह रहा है कि उल्बचनिंग डेनमार्क जो है वो आपके जो पेंशन का दायरा है वो आपको 100% दे रहा है, क्या नाम है अपना रिबेट मेडिसिन के अंदर, लेकिन जो कम्यून है वो 85% दे रही है या उससे कम आपको दे रही है, उसकी वजूहत क्या है? वो देखते हैं जी कि टैक्स वालों ने इस घर की इनकम को देखा। भाई आप मियां बीवी अगर कट्ठे रह रहे हैं, अगर दोनों पेंशनिस्ट हो गए या एक ही इनकम है दूसरा पेंशनर है उसको उसका हक मिलना चाहिए। बात यहाँ पे है हक की, हक पे कौन बात करता है। यहाँ पे हमारे काउंसलर्स को ये चाहिए कि जैसे हमने इनको कहा कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है आपके इलाके में, उसको डॉक्टर क्या देते हैं कि भाई हम आपको कंट्रोल के लिए फॉर्चेस पेंशन या अरेना पेंशन या किसी भी बिफोर टाइम बीमारी की पेंशन में हम आपको भेजने के लिए हम गमी में आपको भेज देते हैं, वो डॉक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। ये एक पीरियड लगता है, बाद ये 6 माह से 3 साल 4 साल तक लग रहा है। अब इसको जो है अब उसको आप असेंबली का मेंबर बनाना ये गैर कानूनी है। उसको के जी आपने जी इसके ऊपर भी एक्टिव बनाना, भाई एक बंदा जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे मफलूज हो चुका है तो आप उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, आप उसको उसकी बीमारी के पैसे दें या उसको कहें कि भाई आप अपनी यूनियन जो बनी हुई है उस यूनियन से आप पैसा लें। आप उसको एक्टिव तो तद रखें कि आप उसको यूनियन का पैसा वो यूनियन से पैसा ले रहा है। जब वो बीमार हो गया और वो आ गया कम्यून के पास तो उसको इन चीजों से बड़ा करना चाहिए, उसको अलहदा करना चाहिए और उसको सिर्फ उस पुराने जमाने की तरह उसको उस आउटडीलिंग में डाल देना चाहिए जहां सिर्फ बीमारी के लोग हैं।
0: शाह साहब आखिरी सवाल है आपसे, शाह साहब ये जो लोग 11, 12, 13, 14, 15 साल हो गए इस मुल्क में रहते हुए लीगल रहते हुए उनको परमानेंट जो है वीज़े नहीं मिल रहे, हालांकि कोई क्रिमिनलिटी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जो है स्टेट पर भी बोझ नहीं है, वो जो सहूलियात अस्पताल की जो होती है वो इंसानी हक है, उनको परमानेंट वीज़े नहीं मिल रहे। कुछ लोग आए हैं जो बाहर से आए हैं, उनकी फैमिलियों को भी वीज़े मिल गए, उनको रिहाइशें भी मिल गई, स्कूल का सिस्टम भी मिल गया, हर सहूलियात जो थी डेनमार्क की वो सारी की सारी उनको मिल गई। जो लोग इन मुल्कों में 50 साल रहते हुए उनको वो सहूलियात नहीं है, जो आपसे बाद आए उनको जो है ज़्यादा सहूलियात है। शाह साहब इसकी कमज़ोरी क्या है, हमने देखा या सोचा तो हर वक्त जो लोग कहते रहते हैं जी डेनिश पीपल्स पार्टी ये मुसलमानों के बारे में ये बयान दिया गया, वो आप वाली बात है कि डेनिश सियासी जमातों की तरफ जाते नहीं है, हल्का भाव अपना बनाते नहीं है, या वो लोग जो आपकी आवाज़ उठाते हैं उस तरफ आप बढ़ते नहीं है, तो शाह साहब इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे गिले शिकवे करने से।
1: देखिए जी यहाँ पे जो हम लोग जो नए कमर्स आ रहे हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस गवर्नमेंट को उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि ये हमारे कानून की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम हमारे जमाने की, हम लोग क्या कहते हैं जी गाड़ी इधर भी हो पाकिस्तान में भी टोयोटा लैंड क्रूज़र हो, गाड़ी यहाँ पे भी हो पाकिस्तान में भी हो, दुकानों से जो पैसा मिल रहा है टैक्स हम पे नहीं करते, टैक्सों को हम चीट ना, हमें बैंक में अकाउंट खोलने की इजाजत है, जितने नए कमर्स आ रहे हैं सारों को बैंक अकाउंट करने की इजाजत है खोलने की, जिसमें दिल चाहे घर लेना हो उनको फॉरेन फाइनेंस हो जाता है। मैं इस चीज का शायद हूँ कि भाई अभी एक आदमी ने वो आए हुए उसको 6 माह हुए उसने यहाँ पे वीजा लिया, तो ये चीजें जो है हमारे लोगों को इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उनको ये पता है कि ये अब जो है हमारे हमें जहनी तौर पर तकलीफ देंगे, हमें इकोनॉमिकली तकलीफ देंगे। अब अभी देख रहे कल परसों की अखबार में था कि ये जो 5 बड़े एक्सचेंज मनी एक्सचेंज थे यहाँ पे नरोब्रो के अंदर, उन्होंने कितने अरब का यहाँ पे फ्रॉड करने का किया और लोगों के नाम उन्होंने मिसयूज किए। अगर एक आदमी है उसने एक दफा वहां पे अपना पर्सनल नंबर दिया, उसका पर्सनल नंबर बार बार यूज हुआ, तो ये चीजें जो है जब हम इस तरह के ज़हनी तौर पे अपनी क्रिमिनलिटी करते हैं इससे दूसरों पे साइड इफेक्ट जरूर पड़ते हैं, लेकिन ये किसने ठीक करना है राजा साहब, ये उन्होंने आके कानून बताना है। जो
0: जब आप बैंक मारते हैं बैंक कार्ड मारते हैं तो फौरन बैंक की तरफ से आता है कि आपने इतना कार्ड मारा है, आपको एकदम बैंक का जो मैसेज आ जाता है। इसी तरह ये जो कंपनियां हैं इसके किसी का नाम यूज करते हैं तो एकदम मैसेज आना चाहिए।
1: देखें जी आप सबसे पहले तो ये है कि ये गैर कानूनी है कि जब आप अपना पर्सनल नंबर किसी आम आदमी को दिखाते हैं, आप अपनी फिक्स डेट जो है ये दे सकते हैं, लेकिन ये 4 लफ्जों का जो पीछे आपका पर्सनल नंबर है ये ऑल ऑलिट है, ये आप स्वाय अपने बैंक के किसी को नहीं दे सकते क्योंकि बैंक जो है वो ऑफिशियल है, अब ये जब ये आपके पास आ जाता है तो इसको मिस यूज जो मर्जी करे, या आप यहां से नहीं करेंगे, आपके नाम के ऊपर दूसरे इलाकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हैरान होंगे
0: तो कि इसका हल क्या है सब चीजों का?
1: इसका हल ये है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। जब तक हमारे लोग जो हैं यहाँ पे, बेशक वो पाकिस्तानी तंजीमात में है, बेशक वो बजाय आपस में लड़ने के, आपस में झगड़ने के, मेरा नवाज शरीफ, मेरा चौधरी अपना शुजात, मेरा मेरा जरदारी, मेरा इमरान, बजाय इसके नारे मारने के, आपके हैं, सबके हैं, हमारे भी हैं, लेकिन इसकी बजाय आप यहाँ की जो है बातें जो हैं, जो भी आपके जहन में आती हैं, उसको डिस्कस करें, रेडियो पे डिस्कस करें, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो आगे जाके 10 आदमियों को बताएंगे कि भाई हमने ये बात सुनी है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है। इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फैलती है। ये याद रखें कि जो आप अदारियां लिखते हैं वो बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतने इतने लंबे अदारियां पढ़ने के लिए टाइम होता है, लेकिन जो सुनने की बात होती है वो आप गाड़ी भी चलाते हो तो आप उसको ऑन कर दें तो आपने मोबाइल से उसको सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने के लिए आपको कान चाहिए, आपको आंखें नहीं चाहिए। तो ये चीज है कि जब आप लिखते हैं तो उसके लिए आपका जेहन, आपका दिमाग, आपकी आंखें जो है वो मोबाइल पे होनी चाहिए, वो खतरनाक है। लिहाजा अगर आप रेडियो पे आएंगे, और मेरी उम्मीद, मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे बात ये कहता हूं कि आओ बच्चे, आओ दिल्ली, आप आएंगे, देखो इदनान आ रहा है, दूसरे आ रहे हैं, जीशान आ रहा है, आप लोग आगे आएंगे, आगे आए। कासिम नजीर का मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, क्या अपना ओस्टल लैंडस्कार्ड में चला गया है, और भी पाकिस्तानी बच्चे हैं हाईस्कार्ड में, भाई आए, कानून का बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन का बताएं, लोगों से डिस्कस करें, ताकि देखो अल्लाह ताला ने ये हमें खुली छूट दी है राजा साहब के, कुरान मजीद अरबी जबान में है, अगर आपको इसकी पूरी अरबी की समझ नहीं आ रही तो आप अपनी जबान में जो उसकी ट्रांसलेशन लिखी है उसको पढ़ के तो आप कुरान को समझे। तो जब हमें अगर डेनिश की समझ नहीं आ रही तो कम से कम अपनी जबान में तो उसकी ट्रांसलेशन सुने, उसकी बात में चर्चा करें।
0: आखिरी सवाल है, 1.5 मिनट है हमारे पास, शाह साहब मुहर्रम कब शुरू हो रहा है?
1: जी पक्की उम्मीद है कि ये 16 की शाम को शुरू हो जाएगा, और ये जो है असल में ये माह मुहर्रम है, लेकिन जो शहादतें हैं जो कर्बला के मैदान में जो शहादतें हैं वो 6-7 मुहर्रम की तारीख को शुरू होती हैं, और उसके बाद 10 मुहर्रम को नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, और ये आगे फिर असल जो है ना शहादतें वो अफसोस के दिन वो 10 के बाद आगे जाती है। अभी तो वाकयात हुए हैं ना कि हज से पहले के ये वाकयात होते हैं, सारा ये लंबी इस्लामी कलीमात है जिसपे हम किसी वक्त बैठ के आराम से बात करेंगे अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इस पर तफसीलन बनाएंगे इन दिनों में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: जी अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी साहब जो कि अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सामान्य हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अदर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है। सामान्य नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: आई हैं, जो पीछे जो कमरे में जो चीज़ें तय हुई हैं, जो जो पार्टियों के साथ उनके जो है मुआहदे हुए हैं, और उसमें आप बताएं ये बस फ्री हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी, दांतों का इलाज फ्री हो जाएगा, और भी पेंशनिस्ट को सहूलियात मिलेगी, ये खाली खबरों की हद तक बातें हैं या प्रैक्टिकली हैं?
1: देखें, ये जो आपने जो चीज़ें नेम की हैं, आपको भी याद होगा और मुझे पक्का पता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग ऑन बोर्ड भी है, कि जैसे कि ये आपने बात की है दांतों के बारे में कि ये फ्री हम देना चाहते हैं, जो हमारे शहरी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो छेड़ने के पास जा सके, ये तो एक ऐसा मतलब कि मैके से है जो मैंने हमेशा अपने साथ रखा है। रीजन का इलेक्शन हो, प्यूहल का हो या फॉल्के सिंह का, मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह होना चाहिए। अब ये जो बसें जो फ्री हैं, ये भी एक नुक्ता है जो मैंने फॉल्के सिंह में उठाया था, क्योंकि मेरा रابطہ स्कॉटलैंड ग्लासगो से बहुत ज्यादा है। एक तो ये है कि मेरी बहन की शादी उधर हुई है, दूसरा ये है कि हमारे जो मेजोरिटी रिश्तेदार हैं वो सारे स्कॉटलैंड गए हुए हैं, और स्कॉटलैंड में ऐसे है कि ये उधर उन्होंने लॉ बनाई है कि जो 22 साल के बच्चे होते हैं उनको, बल्कि 25 साल तक उनको इजाजत है फ्री बस में बैठने की। तो ये भी एक चीज है जिसके लिए मैंने काफी मतलब कि फाइट की, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये देखें बच्चे गोरे हो, काले, जो ब्राउन जो भी हो, हैं तो हमारे ही ना, इन्होंने इनके लिए यूज होगा ताकि अगर उनको फ्री बस से कोपेनहेगन में मिलेंगी तो इनको फिर गाड़ियां लेने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कि वो भी एक कॉइन आर्मस्टरिंग जिसे कहते हैं ना, उससे फायदा होता है। इसी तरह आपको पता है कि मैंने एक नुक्ता जो आपके रेडियो में भी कई बार कहा है, वो हमारी पार्टी पिछले 10 साल से कह रही है कि ये जो फोक तो कॉइंट है, मतलब कि फ्रूट हो गए या सब्जियां हो गई, इन पे मॉम्स हटाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, ये भी हमने मतलब के बात मनवा ली कि होना चाहिए। और बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे हमने कहा है कि देखा जाए कि उसका जो मॉम्स है वो किस तरह हम आधा कर ले, जो कि आपके मेरे हम सबके फायदे में आ सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं, जिस पे फोकस होना चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा है कि हमने एक हैंडिंग्स प्लान जो है, जो गसीसमे के ऊपर सही तरीके से नहीं बनाया गया, गसीसमे जो होता है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होता, जो दूसरे रिलीजियस उनके ऊपर भी हो सकता है, कालों पे भी हो सकता है जो रिलीजियस नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने वर्क करना है, हमने एक हैंडलिंग्स प्लान बनाना है, एक मंशूर बनाना है कि किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो फाटना वॉल होता है, जो खवातीनों के ऊपर जो मतलब के उनके हस्बैंड या ख्यास्त या बाहर से कोई जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उन पर हमला करते हैं या रेप वगैरह होता है, इस पे भी ज्यादा हमने फोकस डालना है कि सही तरीके से इसको कवर किया जाए पुलिस की तरफ से भी, और इनकी जो सपोर्ट बाद में की जानी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत फोकस डाला है, कहा कि होना चाहिए। फिर आपने एक बहुत मतलब के अजीम बात की है, वो ये है कि आपने कहा कासम आप गैर मुल्कियों के बारे में बहुत बात करते हैं, उस टॉपिक पे क्या हुआ है? उस पे ये हुआ है कि जैसे कि आपने भी नोट किया होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक नई हुकूमत बन गई है, तो मेरे फर्जन को कहा गया था कि आपने ये जो वैकेंस कौन लाए का जो मंजूर है कि अगले 4 साल क्या करना है, इस पे आपने गैर मुल्कियों के ऊपर तो सख्ती के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। और उसकी ये वजह है कि हम इस सपोर्ट में नहीं है कि और सख्तियां होनी चाहिए, हम तो ये चाहते थे बल्कि कुछ नरमी होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन इस हद तक हमारे पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था। मतलब आपने ये भी देखना है ना कि मुरगार बैठे हुए हैं, एस एफ बैठे हुए हैं, गाड़ी खेल बैठे हुए, गाड़ी खेल भी इसका के जो चेयरमैन है मासी दिल गवर्नर, बल्कि खुद ही कहा था कि हमने और नरमी नहीं डालनी, बल्कि हमने जो है उसके ऊपर फोकस डालना है। हमारे लिए जो सबसे जरूरी था वो ये था कि मेरे फर्जन ने कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन है, इसमें से हमने बाहर निकलना है ताकि हम और भी सख्तियां कर सके। इधर हमने बहुत जोर लगाया है, और मुझे पता है इनसेस ने भी लगाया और शहर गाड़ी खेल ने भी लगाया हो, हमने जोर लगाया कि हम मिनिस्टर गाड़ी से कन्वेंशन से बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे आपको ओपन मौका मिल जाएगा सख्तियां करने के लिए। तो वो उसके लिए वो अब राजी नहीं है, तो इधर भी मैं कहूंगा कि हमारे लिए एक विन रहा है। तो इसके अलावा मैं और चीज बताता चलूं कि जैसे कि आपको पता है कि जिन बेचारे फैमिलियों के बच्चे होना मुश्किल होते हैं, उनको डॉक्टर से हेल्प मिल सकती है, उनको 6 बार फ्री ट्रीटमेंट मिल सकती है ताकि उनके 2 बच्चे हो सकें। 6 के बाद अगर वो मदद चाहते हैं तो कई बार 80-90 लाख करोड़ तक पैसे लग जाते हैं बेचारों के, क्योंकि वो एक तीसरा बच्चा चाहते हैं या दूसरा बच्चा चाहते हैं, या 6 बार वो ट्राई जो कर चुके हैं उससे नहीं हुआ। उधर उन्होंने ओपन कर दिया है कि जितनी मर्जी बार आपको आप ट्राई करना चाहते हैं, डॉक्टर मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं, आपको मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह बच्चों के ऊपर भी फोकस है, इसके ऊपर भी मैंने आपके रेडियो में एक दफा बात की थी कि बच्चे जो सोशल मीडिया में बहुत आ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुआ है, बातचीत भी हुई। इधर भी उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो 15 साल तक बच्चे होते हैं उनके वो सोशल मीडिया पे मतलब नहीं अपना एक अकाउंट बना सकते।

0: इसी तरह जो मुझे जो मुझे एक जो नुक्ता जिसपे मुझे जो हंसी आई थी वो ये था कि इन्होंने कहा है कि जो हमारे यूथ हैं, टीनेजर हैं, बच्चे हैं, जिनको क्या कहती हैं, सुकुस के प्रॉब्लम आए, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। बल्कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन हंसने वाली बात यह है कि जो पिछली गकियां थी, जो सोशल डेमोक्रेट की थी, वेंस्टर की थी, मुड़गार की थी, इन्होंने एस एफ अगाड़ी खेल खुन सहयोग के साथ मिलके इसको हटा दिया था। वो भी हम दोबारा ले आए हैं, जहाँ इन क्या कहते हैं, यूथ जो है इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और फिर बात ये भी चल रही है कि 2030 में, बल्कि जब उस वक्त जो जो हुकूमत आएगी, उन्होंने स्केल स्टोपल से दोबारा इंफ्योर करना है, ताकि वो एक फ्री डे दोबारा आ जाए। इसके अलावा फिर जो हमारे कॉइन ऑम सीलिंग जो होती है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी मतलब के हाईलाइट्स की, उसके ऊपर हमारी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन चीजों में मैं कहूंगा कि हमारी काफी विन रही है, और हम रकेंग में नहीं गए। मैं तो चाहता था देखना ये कि हम रकेंग में भी होते, ताकि हमें भी एक एक मौका मिलता, एक ऐसे ओहदे पे बैठ के जहाँ हमारी बात भी रोजाना सुनी जाती मीडिया में। क्योंकि अगर मिनिस्टर होते हैं तो जाहिर आपकी पार्टी की बात ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा था कि हम कुछ ऊंचे का हैं, और उसकी वजह यह है कि ये कोई चीजें ऐसी चाहती हैं जिसमें हम साथ नहीं दे सकते, इसलिए हम 25 दफा बनेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली बार देखा जाएगा। जी राय साहब,
1: कासिम, आप कोशिश तो करते रहते हैं। आप देखें, स्वीडन आपके पड़ोस में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो यहाँ की डेनिश पीपल्स पार्टी है, आपकी उनसे हमेशा मोहब्बत रहती है। पिया ख्यास्को चलेगी, उनकी जगह दूसरा चेयरमैन आ गए हैं, तो मोहब्बत का सिलसिला तो चलता रहेगा। इसी तरह स्वीडन में इलेक्शन में ये मुसलमानों की खासकर बात की जा रही है, अब गैर मुल्कियों की बात की नहीं जा रही। तो यहाँ भी ये सिलसिला होना चाहिए कि गैर मुल्कियों से फैसला तो ले लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर ये वोट भी ले लेते हैं, गैर मुल्कियों की भी वोट ले लेते हैं। जब हमारी बारी देने की आती है, आपने डेडिकेट मिनिस्टर की बात की, ये हमेशा इकतदार में रहे ज्यादातर जो है ना, लेकिन कभी इन्होंने कोई ऐसा गैर मुल्कियों के लिए कोई मेजर काम तो किया नहीं है।
0: देखें जनाब, मैं जो डिबेट करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बॉल अपनी क्या कहते हैं गेम लाइन तक रखूं। अब आपने गड़ी खेल वेंसर की बात की है, तो कुछ हद तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी गड़ी खेल वेंसर के बंदे को बुला के इस चीज के ऊपर बात कीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: तो मैं आपसे जो है समरा नवा की बात करना चाहता हूँ कि पहली खातून हमने देखी है, किसी गैर मुल्की ने अभी तक उसकी कोई मुखालफत नहीं की।
0: मैंने तो फेसबुक में मुखालफत भी देखी, और ये भी देखा है कि उसके हक में भी लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे भी है, हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि फाइनली एक गैर मुल्की को हम एक मिनिस्टर की पोस्ट में भी देखने लग पड़े हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो ज्यादा अब पढ़ाई की तरफ फोकस डालते हैं, अच्छी अच्छी जॉबों में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्लब्स में प्रोफेशनल लेवल पे लगे हुए हैं, हम हर तरफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए कि जहां जहां हम रिप्रेजेंट हो सकते हैं सोसाइटी में, उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतनी ही हम आप अपने ऐसे देखना है कि ये हम एक ईंटे लगा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनको पता चले कि ये मौका उनको भी मिल सकता है। हम एक दरवाजा खोल रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है, और जो पहले बंद रहा है, हमेशा बंद रहा है। अगर आप फुटबॉल टीम को लेने, टेंस फुटबॉल जो है, अगर आप इसको लेने तकरीबन 15, 16, 17 साल पहले, 17 साल पहले कह लेते हैं, उस वक्त कोई गैर मुल्की डेनिस टेंस लेंस हॉल पे नहीं था। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली गैर मुल्की की बात कर रहा, नहीं था, वो लेते ही नहीं थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए हैं, रिप्रेजेंट शुरू हो गए हैं, जिस तरह उधर आना शुरू हुए हैं लेंस हॉल पे नेशनल टीम पे, इसी तरह हमने देखा कि क्लबों में भी वो आना शुरू हो गए हैं। सुपर लीग है, जो प्रोफेशनल फुटबॉल जो टूर्नामेंट होती है, उधर भी आना शुरू हो गए। मतलब एक दरवाजा अगर खुल जाता है तो बाकी जो आने वाली जनरेशन होती है उनके लिए आसानी हो जाती है। अब जो समीरा नवाज आई है, मेरे ख्याल से उसको क्रिटिसाइज करने से पहले हमें उसका काम देखना चाहिए। हमने उसको पहले भी देखा है कि वो क्या बोलती है, क्या काम करती है। कोई लोग उसके खुश हैं जिस टॉपिक पे वो करती है, कोई लोग कहते हैं कि इसने इतना नहीं किया हमारे मतलब के गैर मुल्की हक में, इतना नहीं किया। लेकिन ये भी मानना पड़ना है कि उसने गैर मुल्की होने के नाते बहुत सारी मार भी खाई है। जब वो इलेक्टेड हुई थी एज अ पार्लियामेंट मेंबर, तो कोई पार्टियां ने आके कहना शुरू कर दिया था कि ये तो डैनिश है ही नहीं, अपने आप को डैनिश कहती फिर रही है। ठीक है, तो मतलब कि उसके ऊपर क्रिटिसाइज इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हुआ था। लेकिन उसकी सपोर्ट में भी बहुत सारे आए थे। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि पहले इंसान को अपना एक काम करने दें, फिर आप उसके काम से, उसके रिजल्ट से आप उसको जज करें। पहले जो हुआ ठीक है, कोई उसके हक में, कोई उसके हक में नहीं हूं, मैं कैसे हूं वो मैं अपने तक रखूंगा।
1: बड़ी अच्छी बात की है कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मसरूफ हैं आप, हमें टाइम देते हैं और आप मेहनती हैं, वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, अपनी पार्टी के भी हार्ड वर्कर हैं, और आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, ये कैटेगरी सी की तरफ भी जो है, फाइव की तरफ भी जो है ना, ये अपनी पार्टी के कानों में ये बात डालें कि अच्छे लोगों देखें, जो है ना, अच्छे लोगों की वजह, अच्छे ज्यादा अच्छे लोग हैं, किसी चंद लोगों की वजह से जो है ना इस कानून को आपने क्यों बनाया हुआ है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, और यही जो कोशिश होती है ना, तो जो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि देखें, अगर आप एक पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं बैठे, या तो आप कोशिश करें कम से कम अपनी पार्टी के अंदर एक इन्फ्लुएंस लाएं जहां वो आपकी बात भी सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैंने पिछले 10 साल का बल्कि पार्टी बनाई थी इनके साथ मिलके, और काफी मतलब के ऊंचे लेवल पे भी इनके साथ बैठा हूँ, बैठा रहा हूँ और बैठा भी हूँ अभी भी। तो उधर बातचीत होती है, क्योंकि अब देखें जाहिर है हम भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि इसलिए ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो स्टूडे पची होने का फायदा ये है कि अब जैसे फिलिस्तीन के बारे में है कि हम अभी भी उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं जिस तरह हम हमेशा उठाते आए हैं, क्योंकि सबको पता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो है अल-शानसुल। और वो मैंने बात उनसे की है, मैंने कहा कि अगेन फोल्डे में इसके बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया, वो क्यों? तो उन्होंने कहा था कासिम हमारे पास मेजोरिटी नहीं थे, क्योंकि अगर अब हम देखें कि अब अगर ये जो केक बनी है स्टूडे पची से, अगर अल-शानसुल अपने मंडेट ना डालते तो फिर भी ये गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने डालने हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें मिल गई हैं, और अब हम साथ में जिस चीज पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस हक के लिए हम फाइट करना चाहते हैं हम अभी भी कर सकते हैं। तो वही उम्मीद मैं रखता हूं कि हमें पार्टी के साथ मिलके उधर पुश कर सकें जिस तरफ हम चाहते हैं कि पार्टी जाए इंशाल्लाह।
1: कासिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जनाब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और सामईन को मेरी आवाज सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जनाब।
1: सामईन नाज़रीन ये थे कासिम नज़ीर जो के बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर कह दी, वाजे करके कह दी कि किस तरह पीछे बैक पे बैठकर काम किया जाता है। अगर बंदे की नीयत अच्छी हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सामईन नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। सामने नाजरीन ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर अपना रास्ता हाजिर है। तो मैंने आपने सुबह इंट्रो में कहा था कि बहुत सारे मेहमान होंगे, आपको पता है कि इलेक्शन कम्यून्स के होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, काफी टाइम लगा जो है वो हुकूमत बन गई, वजारतें भी तकसीम होगी और आगे काम करना है, तो यही की असल जो मसला है कि आगे काम करना है तो उस काम का कैसे किया जाएगा जिसमें गैर मुल्कियों का क्या रोल होगा, और अब गैर मुल्की जो हैं वो दो वजीर भी बन चुकी हैं, तो देखते आने वाले दिनों में ये क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रखी जाएं, कोई खबरें रखी जाएं, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान अली मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पेशे के लिहाज से ये उस्ताद हैं, तो अब सियासी उस्ताद भी डेफिनेट इनको उस्ताद के नाम से याद किया जाता है। तो ज़ीशान आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको, सब सुनने वालों को, और पहले से ही आपको थोड़ी सी माजत कर दें, ये महफिल में छोटे के साथ फुटबॉल पे आया हूँ, बाहर लड़की ने काफी तंग किया तो वो जैसा नहीं कहते
1: सियासतदान वो है जिसके पास टाइम होना चाहिए, हर तरह का टाइम होना चाहिए, एलर्जी में भी जो है वो टाइम निकालना पड़ता है।
3: हाँ जी वो तो फिर सही है, आप फोन करेंगे तो फिर जरूर।
1: जिस सियासतदान के पास टाइम नहीं है उसे चाहिए कि वो सियासत ना करे,
3: वो तो फिर ऐसे ही मतलब इसके लिए टाइम निकालना
1: आप
3: पड़ता
1: है। आप जैसे लोग और भी लोग हैं, अच्छे जॉब हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, स्टेटस ठीक ठाक है, तो आप आराम से बैठे रहें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आपको जरूरत क्या सियासत करने की?
3: बस असल में सियासत वही है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरे से भी लोग बात करते हैं कि मतलब क्यों करते हो, कौन सा जाती मुफाद है तुम्हारा, मैं यार जाती मुफाद के लिए अगर सियासत करनी होती फिर सारे हम लोग गाड़ी बैठते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम काम है, घर है, गाड़ियां है, मतलब तनख्वाह आ जाती है, इतनी आती है कि और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो पहले अगर आप देख ले, मैं मतलब टीचिंग के साथ 5-6 साल बिजनेस अपना साथ में करता रहा हूँ, मगर अब वही टाइम सियासत को देना पड़ रहा है, तो ये सियासत अगर आपने करनी है तो एक शौक वाकई में ही और एक फिक्र लाजमी आपके में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उस तरह से कोई और मुफाद नहीं आएगा आपका कि जी इकोनॉमिक के लिए कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो। नीयत वही इसीलिए कहते हैं नीयत साफ रखे अपनी और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जाहिर है जलंधर आ जाए आप मिनिस्टर बन जाए वाकई अच्छी लर्निंग है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तो एक दूसरी गेम है ना। हम लोग जो कर रहे हैं
1: वहां पहुंचने के लिए सियासी स्विमिंग सीखनी पड़ती है
3: बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा। अब आप देखें माशाल्लाह से वो नावा बन गई है मिनिस्टर, जो पहली जितना माइनॉरिटी वुमेन और मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ उसको भी अगर आप देखें, मैं मेरे ख्याल से पहली दफा उसको मिला हूँ 2010 में और तब अभी वो वॉस किले में अपना सारा जिस तरह कहते हैं ना शुरू कर रही थी, उसका एक एम था और आज देखें 2026 हो गए, मतलब 20 साल से वो लगी हुई है इसमें अपनी मेहनत करने में काम करने में। और हमारे कुछ लोगों को लगता है कि बस रातों रात आ गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं कुमुनेल वेल में। कुमुनेल वेल में तो आपको पता है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, कुमुनेल वेल में काफी जगह अंदर आना काफी आसान है अगर आपने पार्टी सही सिलेक्ट की हो तो। उधर तो आपको बेशक डैनिश बोलने ना आए, आपके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अंदर जाके बैठ जाते हैं। और हमारे लोगों को लगता है कि जी फलके सिंह की भी जो सी पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ही चलती है, तो वो ऐसा नहीं है। फलके सिंह है, नेशनल असेंबली है, मांगती है, वो बहुत सैक्रिफाइस मांगती है, उसके लिए आपको अपना भी काफी टाइम देना पड़ता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप माशाल्लाह देख ले हमारे मलक सिकंदर साहब, वो उनका भी आप लास्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, मतलब बाहर बैठ के भी बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए कितना एक्टिव है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए
1: काम करना जो होता है उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आपने एक देखा बड़ी चीज हमें मिली है, हैरानगी की बात है और ये बात ठीक भी है कि इस दफा समेरा नवा जो बनी है मिनिस्टर बनी है तो सब ने मुझको अप्रिशिएट किया, किसी ने मुखालफत में बात नहीं की।
3: नहीं जी, क्योंकि वो अपना आप बना के मतलब काफी साल लगा के आई है, एक अपना आप बना के आई है। और अगर आप देखें लोग बोलेंगे जिसने वो अच्छा जी इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री वगैरह ये क्यों नहीं ली, तो ये एक चीज अच्छा है, पॉजिटिव है। ये है कि क्लीमा मिनिस्ट्री ये असल में पहले मुरगारन के पास रही थी, लास्ट ओवर को बड़ा अच्छा मिनिस्टर रहा इस पे, जो उसने बड़ी मिनिस्ट्री एक ले ली अपनी। और गाड़ी खेल की जो मंशूर है उनका, उसमें भी क्लीमा काफी स्पिलाइन करता है, तो अच्छा है वो अपनी एक दूसरी तरह से अपनी पहचान बनाएंगी और फिर इंशाल्लाह इसका फायदा कल को इंशाल्लाह मुसलमानों को भी होगा।
1: चले जी, ऐसे लोगों ने जो है ना आगे बढ़ने के लिए अपना टारगेट रखा होता है, मेहनत का टारगेट रखा होता है, कल वो वजीर आजम ही बन सकती हैं। तो आते हैं आपकी पार्टी की तरफ, तो आपकी पार्टी के कितने वजीर बने?
3: हमारे चार बने जी। अरे पहली पिछली बार मेरे ख्याल से छह थे, इस बार चार बन गए। तो लास्ट लेके जैसे कि आपको पता है वो ऐसे से सबको पता था कि वो तो फॉरेन मिनिस्टर ही रहेगा, जोन सी भी गवर्नमेंट आती फॉरेन मिनिस्टर उसी को चुनना था, क्योंकि उसके अलावा कोई उस पोस्ट पे बैठा और जो दुनिया के हालात है नजर नहीं आ रहा था, तो वो रहा है। तो उसके बाद हमारा जो याकप एंगल स्मिथ है जो कल्चर मिनिस्टर था, उसको अब टैक्स का मिनिस्टर बना दिया। देखे स्कैड मिनिस्टर हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, वो कहते हैं ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें पता नहीं, जो भी मिनिस्टर बनता है उसका काम काफी काफी होता है। तो बाकी एक जो मिनिस्टर है वो रह गई है जो पहले भी थी, क्रिस्टीना हिल और फॉस्टनिंग से की, और साथ की चली सेंग भी उसको दे दिया, वो एक मिनिस्ट्री ने खत्म किया ना डीडी चली सेंग मिनिस्ट्री, तो उसको दो मिनिस्ट्री उसको मिला के उसको दे दिया। और फिर जो सबसे अच्छा सरप्राइज हमारे लिए था वो, और स्पेशली हम जो ओमा इनके कैंडिडेट थे, हमारी जो स्पेस कैंडिडेट थी इधर की मोनिका हुपिंग, उसको सोशल मिनिस्टर और नोर इसामा पायद का बना दिया गया ना, तो वो काफी अच्छा हो गया।
1: क्योंकि आप साथ काम करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो किस तरह की हैं, किस सोच की मालिक हैं।
3: वैसे वो काफी अच्छी अच्छी रही है काम करने में मेरे साथ भी, जब क्या कहते हैं इलेक्शन के दौरान भी फोन वगैरह भी करना, जब मैं डिबेट पे भी गया था इधर हेलो किम नेशन में, उसके बाद में मुझे फोन भी आया कि निशान मुझे वो मॉन्टोस का और उसका जो सा क्या कहते हैं फांसे वाली वगैरह बता रहे थे कि यार आपका जो मुरगारने का बंदा है उसने काफी अच्छी डिबेट की है, तो ये काफी बैकअप करती रही है ना मेरा भी ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो काफी अच्छी पेशे से डॉक्टर, मतलब अच्छी जिसको कहते हैं काउलिस भी अच्छी है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है काफी अच्छा रहा है। और उसका जो कहते हैं कंपेनियन उसका हस्बैंड था वो भी बहुत बड़ा नाइस बंदा, बंदे अच्छे
1: निशान, सारे सिनेरियो में जो है वो गैर मुल्की कहाँ, इनकी सारी पार्टियों की जो कमेटियां बनेंगी, जो कुछ अभी तक सामने नजर आया उसमें तो गैर मुल्कियों का कुछ नजर नहीं आ रहा।
3: नहीं, वो आपको याद है पिछले हफ्ते भी बात की थी, मैंने आपको बताया था, मैंने भी यही सवाल किया था, वो भी कहते हैं, और हमारे मलिक साहब सुंदर साहब ने भी आपके पिछले इंटरव्यू में वही बोला है कि गैर मुल्कियों के बारे में मतलब ना होने के बराबर ही है ना। ये है कि अभी जो बातें की जा रही है सख्तियों की तरफ नहीं जा रहे, मगर ये भी है कि इजी भी नहीं करने लगे हमारे लिए, मतलब जो है वो ही रखेंगे। सरप्राइजिंगली अच्छा अगर आप देखें तो ये हो गया कि ये जो मुश्ताक लोन फॉर जिस तरह के इनके लोग थे सोशल डेमोक्रेट के, इनको इन्होंने थोड़ा साइड पे किया है, मोहनपुरस को जैसे बंदे को ले आए हैं, और मोहनपुरस को के साथ हम हमारी कम्युनिटी की तो काफी लगती है, मुझे पता है काफी दफा उसे देखा भी हुआ है, लॉ लॉ में एक्टिव रहता है, मेरी उससे पुरानी गपशप वो के टाइम से भी है, मतलब हमारी विवाह वाली कम्युनिटी है उनके साथ भी बड़ा अच्छा तल्लक है। देखिए इनसे कशोज निश्चा इस बार काफी हमारे वो जिससे नहीं कहते मतलब का आया है, और हमारे जितने दोस्त यार जो सोशल डेमोक्रेट्स में बैठे हुए हैं उनके साथ मुझे पता है उसकी अच्छी बातचीत है, तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने बात जितने भी हैं आगे लेके पहुंच सकेंगे अब आसानी से थोड़ा सा।
1: चलें ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये जो बात चल रही थी पार्किंग की भी बात होती है, इनिस लिस्टन वाली आपकी हुकूमत में शामिल तो हैं लेकिन उनको वजारते नहीं है, ऑफिशियली तो चार जमातें शामिल हैं। ये जो दांतों के डॉक्टर्स का बताया कि दांतों का इलाज मुफ्त होगा, तो लोगों ने यही सोचना शुरू कर दिया कि दांतों का इलाज मुफ्त हो चुका है, और इसी तरह 22 साल तक का जो सफ़र है, सफरी जो सहूलियात हैं बसों की ट्रेनों की, ये हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल अभी ये पेपरों में ही काम है, खाली बातों तक की हद तक है।
3: जी राजा साहब, असल में ये एक समझने वाली बात है पॉलिटिक्स में, स्पेशली वेलफेयर सोसाइटी में हमारे लिए समझने की जरूरत है। देखें जी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, दांतों के डॉक्टर, वो तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा, फ्री स्कूलिंग वैसे है, मतलब ले हेल्प जो सोलह हेल्प है वो सारी फ्री है, मगर फ्री तो असल में कुछ भी नहीं होता ना जी, इन दी एंड फ्री हम सब चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं से तो फिर पैसे आने ही होते हैं, तो फिर वो एक चीज हमेशा रही है कि इन दी एंड पैसे तो हम नहीं देने, इधर से दें कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े
1: तो पैसे तो देंगे। आप देखिए ना, ये जो पेंशनिस्ट हैं या सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप पेंशनिस्ट हैं, लेकिन इनकी जो सहूलियात मिलती हैं फिर घूम घाम के, तो फिर पेपर तो डॉक्टर्स भी वहीं भेजते हैं कम्यून के पास, कम्यून सपोर्ट करती है। तो अगर ये मैं कहता हूँ ये एनकों वाले और ये दांतों वाले मेरी नज़र में एक माफिया की शक्ल में है कि इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, आपको अस्पताल में जो अखराजात होते हैं वो फ्री हैं, तालीम जिस तरह आप कह रहे हैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी फ्री है, दांतों का इलाज स्कूल में बच्चों के लिए फ्री है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, या कि पीछे ऐसा माफिया है जिसके सारे मफादात इन चीज़ों में, जिस तरह शुगर की दवाई जो है वो अभी तक ईजाद नहीं हुई, हम एटम बम बना चुके हैं, ब्लास्टिक मिसाइल बना चुके हैं, शुगर की दवाई ऐसी नहीं बना सके जो एक ही बार खाएं तो खत्म हो जाए।
3: बस असल में वो फ्री करते करते के चक्करों में वही हो जाता ना, वो ब्यूरोक्रेसी बड़ी आ जाती है। मेरी लड़ाई हमेशा थोड़ी सी ये जो रेड पार्टी जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक लेवल पे गौर फछिया, इनके साथ मेरा हमेशा यही रहा है कि इतनी ब्यूरोक्रेसी आ गई है हर जगह, स्कूल में भी आप लोग देख लें, मतलब इतना ब्यूरोक्रेटिकल वर्क हो गया कि मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ पढ़ाने से ज्यादा ये जो बाकी काम मेरे से करवा रहे होते हैं ना, ये जान तंग की हुई है। और इधर मुझे थोड़ा सा जो फ्लो इकोनॉमी है अच्छी ज्यादा इसलिए लगती है कि ये थोड़ा सही करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कम हो, पेपर वर्क कम हो, और आगे जाकर मतलब फायदा हो हम लोगों को, ये चीज बड़ी जरूरी है, और ये कर नहीं पा रहे क्योंकि ऐसा सिस्टम बन चुका है कि पता नहीं इतना पेपर वर्क है हर चीज का कि बंदा पागल हो जाता है। सो ये एक बड़ी वजह रही है हमेशा, मैं भी जब मुझे कभी पूछते हैं बफाड़ की इन्हें बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी है, मेरी हमेशा ये लड़ाई रहती है यार पेपर वर्क बड़ा इकट्ठा कर दिया तुम लोगों ने, हर चीज फ्री करने के चक्करों में हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन करो, और आप वही देख लें हमारे अब सोनो स्पेस का क्या हाल हो गया, आप और हम लोग कितने इतने साल हो गए हमें कि पहले कितना अच्छा होता था, अब आप फोन करते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों करते हैं जी, तीन तीन चार चार छः छः महीने बाद टाइम मिलता है, अगर आपकी कोई फसीकनिंग हो अगले हफ्ते टाइम दे देते हैं आप,
1: और ये भी एक सवाल या निशान, अगर आपकी फसीकनिंग है तो आपको जल्दी टाइम मिलता है।
3: बिल्कुल, और वही डॉक्टर है, वही फोन है। अगर आप उसे बोलो ना मैं फसेकरिंग, मेरी फसेकरिंग कवर कर रही है, तो अभी हफ्ते का टाइम मिल जाता ये है।
1: और छह महीने या तीन महीने के बाद जो टाइम मिलता है वो 10-15 मिनट में बात जाते हैं, खुदा हाफिज़, आ जाओ अपने डॉक्टर के पास चले जाओ,
3: बस ऐसे ही है। वो गलती से टाइम खत्म हो जाए, अगर वो बोले कि ठीक है तो फिर नए सिरे से। और तो ये एक काफी चीज मैं देख रहा हूँ कि
1: तो ये किसके अंदर आती है, इसको किसने ठीक करना होता है?
3: इसको तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ने सही करना है जी। ये जो ब्यूरोक्रेसी सारी बनाई हुई है, इसको कैसे खत्म करना, ये एक चीज है। आप तो मैं बताऊं, मेरा एक जो एक पर्सनल शौक भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आने के लिए रहा, वो ये भी देखने के लिए आया कि यार ये इतना ज्यादा इनविक्लर क्यों है, हर चीज को इतना इनविक्लर इन्होंने क्यों कर दिया है कि जो अच्छा बंदा है, नॉर्मल बंदा है, जो कोई सलाहियत रखने वाला बंदा है, वो पॉलिटिक्स में इतना, जो एजुकेटेड बंदा कम कम लोग आना चाहते हैं। आजकल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मिनिस्टर्स जो आप बैठे हैं, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि काफी सारे मिनिस्टर हमारे ऐसे बने हुए हैं, इनके पास अवैध फाइन कोई नहीं है, ये पढ़ के आए हैं बस, वो यंग एज से पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, स्टेट्स कॉन्स्केप ऐसे कुछ पढ़ के आ गए हैं, काम कभी इन्होंने 5-10 साल किया नहीं पाया। तो ये भी बड़ा मसला है कि जो हमारे बैठे हुए हैं लोग अंदर, ये ऐसे हैं जो बस पैदाइशी पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बाहर दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने काम खुद नहीं किया वो बैठे हुए हैं। तो ये भी आपको पता, ये भी मसला हो जाता है, और ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो ये एक मेरी बड़ी इंटरेस्ट रही है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए कि मसला क्या है वैसे इधर की पॉलिटिक्स पे। वो मैंने कहा तनकीद
1: बाहर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप सुरसा में भी बैठे हुए हैं, तो आपकी मुलाकातें भी आपके चेयरमैन से, लीडर से होती रहती हैं किसी न किसी मौके में, या आप लोग इकट्ठे होते हैं। ये जो कैटागरी सी वाला मामला है, देखें जो अच्छे शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो देखें ना, मुझे छोटा बेटा कह रहा था कि अभी इससे लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सुसिकनी कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप में एक ऐप सा आ गया, उस पर आप करें तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो कैटागरी सी में ऐसी बना लें जो अच्छे लोग हैं, उनके तो ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल, और वो मैं लास्ट वीक जब आपसे बात हुई थी, मैं यही सोचता रहा हूँ कि अब हमें करना क्या चाहिए और क्या करें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे इतने बंदे एक्टिव हैं, इतना टाइम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने में भी, तो थोड़ा सा टाइम इधर किसी तरह निकाल के ना, अब हम लोगों को वो क्या कहते हैं ना, ऑकेनिशे होना पड़ेगा। मैं ये इतना मुझे होप फेस्टिवल से मेरा है, पॉलिटिक्स में भी आगे पीछे देख के पता चल गया है कि लॉबिज्म डेनमार्क में काफी चलता है, और लॉबी कोई भी हो, और ये है कि इधर भी फंडिंग होती है, इधर भी फंडिंग होती है, क्रोने लगाए जाते हैं पार्टीज पे, हमें भी आना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मतलब एज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जाओ, चले मुसलमानों को इकट्ठा करना और मुश्किल हो रहा है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में माशाल्लाह, अब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो देखें काफी अपने बुजुर्ग हैं, काफी बड़े हैं, हमारे कितने पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जो इधर पले बड़े हैं, मगर जो इधर ग्रीन कार्ड पे भी आए थे कुछ साल पहले, वो भी बड़े पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं। अब हम लोग सारे इकट्ठे हों किसी तरह, कोई इनको इकट्ठा करे, अम्बेसी की मदद ले, साहब मैं सुन रहा था कि अम्बेसी से भी काफी लोग खुश हैं, और लॉबिज्म की जाए, कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट अब कितने हैं, हम सब किसी न किसी पार्टी में कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट लेके चलते हैं, फंडिंग करनी पड़ी तो पार्टीज की फंडिंग भी करो जी, क्योंकि फंड्स की हर पार्टी को जरूरत है, फंड दो और अपनी मनवा लो, ऐसा ऐसा ऐसा चलता है, इधर भी चलता है लॉबीज़।
1: देखिए ईशान, मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, स्वीडन में आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं, गालबन 13 सितंबर को हो रहे हैं, उसमें तो कमून के पार्लियामेंट के होते हैं, तो उसमें भी जो जिस तरह की डेनिश पीपल्स पार्टी डेनमार्क इसी तरह की स्वीडन में है, तो उन्होंने अब बयान देना शुरू कर दिया है, ये जो आज़ादी होती है बोलने की कहने की, कि अब जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, गैर मुल्कियों के लिए नहीं बोलते, टोटल टारगेट जो किया जा रहा है मुसलमानों को। तो अब एक सवाल ये समझ नहीं आता कि हमें इबादतगाहों की भी हमें इजाज़त है, इतनी इतनी अच्छी मस्जिदें बन गई, कल्चर सेंटर बन गए, सारी चीज़ें बन गई, इन्होंने हमें इजाज़त दी है तो ये बनी है ना, लेकिन उसके बाद मसला ये है कि ये फिर क्यों बात करते हैं। तो बात अब समझ आती है कि जितनी चीज़ें ये इबादतगाहें या चीज़ें बन चुकी हैं, ये सारी मुसलमानों की जो जितनी भी चीज़ें बड़ी बनी हैं, इनको कंट्रोल कोई और करते हैं बाहर से बैठे हुए लोग।
3: हाँ वो बाहर से भी है राजा साहब, असल में फिर वही आ जाता है कि सहूलियत,
1: ये गैर मुल्कियों को टारगेट नहीं कर रहे जो स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं डेनिश पीपल्स पार्टी, वो अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ।
3: असल मुसलमान से जी अल्लाह माफी हम तो पूरी दुनिया में टारगेटेड है, क्यों? क्योंकि हमारा कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, कोर ही नहीं है, कहीं कहीं इकट्ठे हो गए खड़े ही नहीं होते हम लोग। उन्हें पता है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस वक्त वो ग्रुप पर रह रहे हैं जो सबसे कम ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अभी भी आप देख लें, मेरी वही लड़ाई है कि अब जब गवर्नमेंट बनी है, ब्लू ब्लॉक ने यही कहना शुरू कर दिया जी कि जी उलनिंग फुल छीक मुस्लिम, फिर वही उठा लिया। और मैंने कहा भूत नहीं दे, खबर निकल रही है कि हमारे स्कूलों में बच्चे डेनिश मैथ नहीं पास कर पा रहे, इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए हम लोगों को, तुम लोगों ने फजूल का हवा बनाया हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम बना देते हैं।
1: आप बताएं, एग्जांपल दें कि मैं मुसलमान, आप मुसलमान नहीं है।
3: या नहीं, हम तो देते हैं ना जी, और जो होते हैं वो तो कहते नहीं अच्छे हैं, मुंह पे तो आपके हमेशा बोलते हैं, मगर बस ऐसी अच्छी कोई हर मुल्क में चली हुई है आजकल हमारे खिलाफ के, और हम कहीं से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, कोई एक आवाज कहीं भी नहीं बनती हमारी, अनफॉर्चुनेटली। जो आपसे भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बात हो रही थी कि अगर आप हम सबको देखें जो पर्सनली लेवल पे मुसलमान, मैं हूँ अब, मैं मुझे 40 साल हो गए पर्सनल, मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ, काम मैं कर रहा हूँ काम पे भी अच्छी रिस्पेक्ट है, काफी लोग जो मेरे दोस्त यार हैं आपको भी, हमारे जितने लोग कामों पे हैं कामों पे हमारी ठीक रिस्पेक्ट है, मगर ये जो मीडिया, ये जो एक छोड़ी क्या है, ये जो एक नैरेटिव है वो एक दूसरी चीज है, और उसमें जाहिर है सबसे कमजोर हम हैं, तो सारे ही हमें लताड़े होते हैं।
1: बहरहाल देखें ना, अल्लाह ताला ने टाइम दिया होता है लोगों को, अल्लाह यहाँ से इस मुल्क से जो सीखा होता है। लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एलर्जिक भी आपको है, लेकिन उसके बावजूद टाइम दे रहे हैं, ना टाइम दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको से टाइम आपका इंटरव्यू ना लूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मुल्क से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ इसने हमें दिया है, और जितनी हमारे पास सहूलियात होती हैं बात करने के लिए, टाइम के लिए होती हैं, उस पर अपनी ज़ाती कुर्बानी भी देनी पड़ती है।
3: बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें मेरी बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता होता हूँ वो भी कहते हैं यस, कहते हैं मैंने इधर नहीं रहना, इधर से चले जाना है, ठीक है चले जाना, जाओगे किधर, ठीक है जाओगे किधर, जाने के लिए बड़े मुल्क हैं जिनकी एजुकेशन है जा भी सकते हैं, बिल्कुल है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क ने देखे इतनी हमें और हमारे वालदैन को भी और हमें भी इतनी कम अज कम अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच गए। किसी अरब मुल्क में रह रहे होते काफी ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज ये है कि आज हमारे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हो गए, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं, डेनमार्क की वजह से बैठे हैं, नहीं देखो सिस्टम की वजह से ही बैठे हैं। आज घर बैठ के गालियां देना बड़ा आसान है, मगर बीच में उतर के साथ इकट्ठे होके किस तरह ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं वही आपको कह रहा था, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए एक दफा, कितने कितने अच्छी अच्छी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, फंड बना लेते हैं जी, हम लोग पार्टियों को कहते हैं हम लोग आपको फंड देते हैं, ये हमारी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटी है, पाकिस्तान के वीजों का कुछ करें फंड, हम आपको मतलब हम आपकी पार्टी को अगले इलेक्शन में इतना फंड दे दो, ये करें आप लोग हमारे साथ मीटिंग, मीटिंग्स होती हैं इधर भी, आप जब पार्टी को फंडिंग की जरूरत है हम लोग इकट्ठे हो के सिर्फ बातें करने, नहीं कुछ उनको दें कुछ उनसे लें, कुछ देंगे नहीं कुछ मिलता भी नहीं,
1: ये म्यूचुअल ट्रांसफर होती है,
3: बस ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, इतना इतना अब जो पैसा हम कमा भी रहे उसको थोड़ा सा किसी अच्छी तरीके से थोड़ा टैक्टिकली लगाया जाए, जाहिर है ये है कि एक हम मुसलमान भी हैं उसमें भी हमें काम करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तानी है पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर डेनमार्क में एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो तो सारे मानते हैं कि यार आपके तो वाकई पाकिस्तानी वेल एजुकेटेड अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी कमाई है, मगर हमारी मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है सही तरह, सारे अपने अपने मतलब पाकिस्तान की पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर तो कम से कम एक करके किसी तरह हम बढ़े ना कि एक होके आगे जाके बात कर सके। अब इंटीग्रेशन में शायद आपको बोला था मॉडर्न टूल्स का हो गया है, उसके साथ किसी तरह अच्छे से गुफ्तगू करें जाके, मगर गुफ्तगू नहीं सिर्फ, सोशल डेमोक्रेट वाले भी पूछेंगे हमारे लिए क्या है, उनके लिए फिर कुछ होना चाहिए।
1: बिल्कुल आप
3: हमें लॉबीज़म और इन सब से ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती है हमें वो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, और इधर कम से कम ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो अल्लाह खैर करे।
1: लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जो हैं चौथी जनरेशन आ रही है, तो पहलों को तो छोड़ दे, उन्हें कहना नहीं चाहिए, उनको सलाम पेश करते हैं, उन्होंने इन ममालिक को ढूंढा, उनकी वजह से बच्चे आए, फैमिलीज आई, बड़े हुए, दामाद आए, बहुएं आई, ये सारा सिलसिला उनको जो है क्रेडिट जाता है। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं, यहाँ की सियासत है, रहते इन ममालिक में सियासत हम अपने ममालिक की करते हैं, वहाँ की पार्टियों की करते हैं, उनकी हम पार्किंग प्लेस बनाते हैं, कोई भी कोई आ जाएगा तो यहाँ के जितने भी सफर आए वो कहते हैं कि बेशक आप सियासत करें, अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में जा करें या डेनमार्क की सियासी पार्टियों की सियासत करें। इस तरफ लोगों को किस तरह के आप मैसेज देंगे?
3: उनको बस यही दूंगा जी कि पाकिस्तान की भी सियासत करें, मगर इधर जो आपकी अब इतनी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बन चुका है सियासत के अंदर, इधर थोड़ा सा उसको यूज करें ना जी, इधर भी हमें बताएं कैसे करना है, क्योंकि सियासत एक चीज है जिस मुल्क में भी हो उनमें काफी सिमिलैरिटीज है, हमारे इतने बुजुर्ग हैं जो अगर पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं तो इधर भी हमें सिखाएं कुछ। अब कैंपेनिंग करते हैं पाकिस्तान स्टाइल से, इधर डेनमार्क में करते हैं अच्छे खासे वोट हासिल हो जाते हैं, तो ये नहीं कि पाकिस्तान स्टाइल से कैंपेन नहीं करेंगे आप तो इधर आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होता है उस चीज का। तो पाकिस्तान में जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जिस तरह आपने वो कहते ना कम कटवाते हो, इस तरह भी इधर हमें बताएं ना, फिर हम इधर भी तो काम निकलवाएं, थोड़ी सी बस एनर्जी इधर भी ले आए और अपना एक्सपीरियंस इधर हमें भी बताएं कि किस तरह होता है। और जो घर बैठे हुए हैं ठीक है अच्छा है जिंदगी चल रही है, मगर कॉन्ट्रीब्यूट करें जिस तरह भी कर सकते हैं, माली करें या अपने एक्सपीरियंस से करें, अपने वो फाउंडेशन से करें, कोई टाइम देता है उसको टाइम देने दें। हमारा बस मसला ये जो आगे आने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है बस ये अपनी वाह वाह कराने आ रहा है। मैं सबको वही कहता हूँ, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए
1: नहीं नहीं, लोग एक और लफ्ज यूज करते हैं इसे जो जी पर्सनली प्रोजेक्शन चाहिए।
3: मैं वही सबको कह रहा था, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए सोशल मीडिया चलाना है, अपना वीडियोज रखना, ये करना, वो मेरे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम लेता है। आप देखे ना इलेक्शन के बाद मैं भी जरा ठंडा हो गया, सुकून का सांस ले रहा हूँ, मगर वही अब सारे कह रहे हैं यार तुम्हें सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, अखबारों में जैसा मलिक साहब हमारे कह रहे हैं लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, काफी कुछ आपको देना करना पड़ता है, इसमें बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ा टाइम है। और वही मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि ये टाइम मैं दोबारा अपना बिजनेस बना लेता हूँ, कोई कमी है हमें वही मैं पैसे कमा लूंगा, मगर ये एक मेरा चले शौक है, एक फिक्र है अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो एक पेशा ही ये है, तो मैं कहता हूँ चलो मेरा तो डबल फायदा हो रहा है ये करने से भी। मगर ये काफी लोग हमारे लीक हो चुके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी चल रही है राजा साहब, घर बैठ के तनकीद कर देंगे मगर इन दी एंड काम है सबके पास, तनख्वाह आ रही है, गाड़ी है, घर है, खाना पीना है, इन दी एंड मतलब हमें उस तरह से मसला कोई नहीं, सो मेहनत कोई नहीं कर,
1: मेहनत कोई नहीं करते, बड़ी जबरदस्त बात है, गिले शिकवे बहुत होते हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम जीरो होते हैं।
3: तो देखिए अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट का काम शुरू होगा, ऑफ या फौस्ता अगले हफ्ते तक आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफ अभी हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में। ये है कि मैं इसी सोच में हूँ, आपके रेडियो पे भी बोलता हूँ कि किस तरह जरा इकट्ठा किया जाए अपने लोगों को, जो जो मेन मेन हर अपनी तंजीम के जो सदर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनसे पूछने के लिए कि आपकी तंजीम क्या बातें करने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, सब लोग तो बातें सारे कर सकते हैं आपके पास हर वीकेंड आके, मैं भी कुछ, मगर प्रैक्टिकली क्या करना है आगे से इसका कोई अब करना पड़ेगा हमें, जो सा नहीं है काम, काफी अच्छी पोस्टों पे साहब वो इंटीग्रेशन मिनिस्टर आ गया,
1: तो
3: काफी
1: हमारे अच्छा। एक दोस्त हैं तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा यार ये लोकल शोर पड़ा रहता है, मुझे भी लोग तनकीद करते हैं, ये क्या आपने गंद डाला होता है, तो कहते हैं नहीं नहीं राय साहब छोड़े इन बातों को, लोगों की बात ना सुने, ये हमारा शुगल है।
3: बस फिर हम भी शुगल नहीं बन के रह जाएंगे, ठीक है जी, फिर जितने जो मैं जैसा करना वैसा भरना है राजा साहब, अब क्या कर सकते हैं, मगर देखे मेरा तो छोटा मुंह बड़ी बात है, मेरे से पहले इन कामों में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव है, मैं तो इसलिए कहता हूँ आगे हैं हम लोग,
1: चूंकि आप ऑर्गेनाइज पढ़ने का मसला नहीं है, आप लिखा करें अखबारात में लिखा करें, बिल्कुल ये आपकी जो टाइम निकाल के कभी कभी हफ्ते में महीने में दो महीने में आर्टिकल्स लिखने चाहिए।
3: हाँ जी वो तो है, लिखने का मैं बड़ा बुरा हूँ, मेरा असल में अगर मैं अगर सैंपल से ना पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरा तो न्यूज देखने का दिल मेरा भी नहीं करता, जो आपस की बात है, मगर ये है कि जरूरी भी बहुत है, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं ना घर छुप के भी नहीं बस बैठे रह सकते कि जी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सब काफी कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अगर हमने कुछ किया ना तो फिर ये है कि बेहतर नहीं होगा कुछ भी,
1: कुछ बेहतर नहीं। जीशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हालत में हमें टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: सलाम अलैकुम। सामान नाज़रीन, ये थे ज़ीशान अली जो कि फुटबॉल ग्राउंड में थे, बच्चों के साथ फुटबॉल का मसला चल रहा था अपने बच्चों के साथ उनका, ये टीम वर्क होता है, उसके बाद एलर्जी भी उनको थी लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया تو سامع ناظرین ہمارا کام ہے, ہمیں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم کوئی پولیس مین نہیں, ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا. کوئی دینا چاہتا ہے اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے, لیکن ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے.
4: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: سامعین ناظرین, موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو موسم آج بہت اچھا ہے, بادل بھی ہیں, دھوپ بھی ہیں, لیکن موسم بہت اچھا ہے, خوشگوار موسم ہے. سیاسی موسم بھی اچھا بھی ہے اور ملا جلا بھی ہے. غیر ملکیوں کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں, ڈنمارک کے بارے میں, ڈنمارک کے شہریوں کے بارے میں, تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار عدنان علی امین, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
5: وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صاحب کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر عدنان, آپ سنائیں. ٹھیک ہے عدنان, آج موسم کے لحاظ سے جو سیاسی خبریں ہیں اور کیا بریکنگ نیوز لا رہے ہیں, کیا کمیٹیوں میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے, بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں سیاسی.
5: ہاں راجا صاحب, دھماکے تو کافی ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی جو بن گئی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا کیا کہتے ہیں کام کرنا شروع کر دیں گے. سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے نا, یہ ویل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فینس ویل, جس میں یہ سارا بجٹ وغیرہ اور وہ آتا ہے, اور اس میں بگیسٹ سرپرائز یہ ہے کہ اس کی جو چیئرمین ہیں وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انگلش لسن کی لڑکی ہے جس کا نام وکٹوریا ویلسکوسیس ہے, کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ ہے میل امریکہ سے, مطلب کہ وہ بھی آدھا. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایک بڑی پوسٹ پہ کیا کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ اس کا ادھر سے بھی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اس کے اندر, اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس ویل میں بیٹھ گئی ہے. اور اس میں سرپرائزنگ یہ ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے وہ ٹیسٹ ہو کے پر ٹھیک ہے, تو مطلب کہہ لیں کہ یہ ایسی ویل ہوگی جس کے اندر دونوں کا کیا کہتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ انگلش لسٹ نے ایک طرف جانے لگیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جانے لگیں گے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ویلنگ کے پل سیٹ کے علاوہ ویسے تو ان کی کافی چیزیں آپس میں ملتی بھی ہیں, کیونکہ وہ بھی پینشن کے بول پہ بولتے ہیں اور ان چیزوں پہ بولتے ہیں, تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا ہوپفلی اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 10th فال کے 25 جو ہے وہ ان پہ اسوات ویل کے پرومنٹ پاسٹ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں, وہ 2024 سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیو کریں گے. اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے, کافی بال کیا کہتے ہیں چینج کیا گیا اور کافی کیا کہتے ہیں بال وغیرہ پھینکے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اپنا کام شروع کر دیں گے اور اپنی چیزیں کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان پہ اب کیا کہتے ہیں قسم کا کام شروع ہو جائے گا. سیاسی بریکنگ نیوز پہ یہ بھی ہے نا کہ 11, 12, 13 تاریخ کو فال کے موجود ہوتی ہے پاول کے اندر, جہاں پہ یہ سارے کھڑے جاتے ہیں, تو یہ تو وہاں روانہ ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا کہتے ہیں سخت مقابلہ آئے گا, کیونکہ دو پرانے زمانے میں جس طرح ہوتے تھے بلاک, اس قسم کے بلاک آ گئے ہیں نا, کہہ رہے ہیں خود بلاک اور ایک لو بلاک ہے, اور دیکھتے ہیں کس بار کتنے ہیوی اٹیکس ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لوکے پہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ اس نے پہ تھاوی کی ہے فلو بلاک کے ساتھ, تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں ویلنگ کے پیٹ بھی بڑا ہارٹ ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ موٹر اسپور کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, ٹینس بال کے پچی پہ کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, تو وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے, کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے اور سٹرونگ کرنا نہ ہو جائے, کیونکہ یہ کافی لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے, تو وجہ وہ یہی ہے کہ جو ٹینس بال کے پچی اور تیمس کے مکھاڑ ہیں ان نے ویلین کے کلچی کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے. ایک اور میں چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جن کے پاسپورٹ ہولڈ ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے, وہ 3-4 اور نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاسپورٹ کی طرف آئیں گے. جو میں نے اس کی لیٹسٹ انفارمیشن سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہم افتتاح تک پہنچ جائیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کیا اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی ہیں.
1: अदनान, ये जो फिल्मी डायलॉग्स की तरह बातें की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, आप अगर इनिशिएशन की बात करें तो वो उनकी जो है उस वेल की जो है वो चेयरमैन बन गई हैं इनिशिएशन वाले, तो वो ज़रा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो उनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
5: सब मैं एक बात आपको कहूँ कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहा करना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मिलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उनने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
1: और तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
5: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है, दूसरा कैपेसिटेट का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, 10 प्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी हाश थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा। और जो इरागन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाने। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चरिस्ट और जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाने तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक कैंपेन ने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता था प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तबील करके लाके इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
1: सबसे पहले जिस तरह बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप क्या सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
5: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन लोग थे, लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फिनिशर स्टार्ट टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे वो मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस नए आ गए, पुराने हट गए, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये
1: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
5: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास। جو اس کے پاس ہے.
1: تو آپ دیکھتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے بات تو بڑی کرتے ہیں, سیف والے بھی بڑی بات کرتے ہیں, ریڈیکیل ونسٹا والے بھی ہمیشہ ووٹس لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹیگریشن کے منسٹر ہیں انہوں نے بیان دیا, تو اب بات تو پتہ لگے گی کہ جو جو ان پارٹیوں میں وہ کس طرح اپنا رول ادا کریں گے.
5: صاحب آپ ایک چیز میں سے یاد رکھنا کہ اولنی پولٹیکن کا جو نیگوشیشن اس کنگز کونلے کے اندر نہیں لکھا گیا ہوا, مگر اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ سیٹنگ گورنمنٹ ہے. آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس کے اندر سے لاس لوگے کا اور میرے خیال اس کے منتحٹا ڈالے جائے نا تو وہ بن جاتے ہیں قریباً 52, اور وہ مطلب پہلے ہی اس بلاک کے اندر کلیئر چل ہے کہ سام یونین پولٹی کو نہیں چاہیے. ٹیکنیکلی پارلیمنٹ کے اندر پھر آپ لوگ ونس کا بھی ڈال لیں, نیپال بھی ڈال لیں, پیسوال کے پچی بھی ڈال لیں, مکوڑا بھی ڈال لیں, تو ویلنگ پولسی جو بن گئی ہوئی ہے وہ وہاں پہ ہی رہے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑی سخت ہو جائے مگر وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ جیسے بات چل رہی ہے ابھی کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو باہر سے کسی انکلوڈنگ ڈینس کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ شادی کر لیں یا کوئی چیز کر لیں تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے, مگر جو نیا بندہ لا رہا ہے ساؤتھ ایشیا سے جس مطلب وہ پوری فیملیوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا یہ بہت دیکھی جا رہی ہے.
1: تو یہ تو غیر ملکیوں کو پوچھنا چاہیے نا کہ اگر آپ نے جن جن کو ووٹ دیے ہیں وہ بولتے کیوں نہیں ہیں.
5: ارے سب یہ تو وہ ان کو ہی پتا ہے نا, یہ تو کوشچن اس لیے ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ایک ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں ایک یہ الیکشن جب ہو رہا تھا, الیکشن کے دنوں میں جو بیٹھ ہو رہی تھی وہاں پہ نا ایک چھوٹی ساری بات شروع ہو گئی کیونکہ رومال پہ چاکلیٹ پر ڈبیٹ شروع ہو گیا, اور وہ پریپریشن کے ساتھ آئے ہوئے تو مجھے پتا تھا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ, اس کی بھی پہنتی تھی وہ جیپ جیپ اسٹینڈ اس کے تھے, میں یہ میری بیوی کا راج تھا, وہ یہ کہتے تیری بھی شامت آ جائے گی. میں نے کہا دیکھ میں کہتا ہوں میری شامت نہیں آئے گی, یہ چپ کر جائیں گے. وہ کہتا ہے, میں نے کہا ایک بات مجھے بتا, تم نے مجھے سوال ہی کون سا کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا, تمہاری بھی شادی ہوئی. کہتا ہوں, کہتا تم اپنی بیوی کی ڈیسیشن سپورٹ نہیں کرتے. کہتا میں اپنی بیوی کی ڈیسیشن سپورٹ نہیں کرنی تو کس کی ڈیسیشن سپورٹ کرنی ہے؟ تو میں نے تو اسے کہا تو تم میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنی بیوی کے اگینسٹ چلا جاؤں کہ وہ رومال پہنتی ہے؟ اور ادھر جتنی سیل تھی وہ سارے چپ ہو گئے, وہ سارا ایک بات میں بندہ کہتا ہے تو نے جواب, میں نے کہا تو میں نے اس کو جواب صحیح دیا ہے, اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کرے گا, میں سپورٹ کروں. میں نے کہا بات ہوتی ہے کہ آپ کرنے کی, اب جتنی پارٹی والے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ سوال اپنی پارٹی سے پوچھنا چاہیے. میں نے جب پوچھا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپس کی طرح ہم نے کیا, اب اس کو ہم تبدیل کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اب دیکھتے ہیں, اب نیا بیٹھے موتوز کو میں ڈیفینیٹلی اس سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ وہاں سے تو کھلا لا رہے ہیں مگر جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں آپ ان کو پولتے نہیں دیں گے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا کچھ کریں, تو آپ کی تو پرابلم سیم ہے. اس لیے آپ کو پہلے فرسٹ پریورٹی کی یہ کرنی چاہیے کہ جو یہاں پہ ہیں ان کو ساری سہولتیں دیں, اس کے بعد دوسری طرف جا کے دیکھیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ چھوڑتے جائیں گے آپ باہر سے لاتے جائیں گے. موت میں وہی بیان دے اگلے الیکشن میں, ایک اندر آئے ایک بار آئے. میں نے کہا اس ڈیبیٹ کو ختم کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ کرنا پڑ رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم سیم طریقہ بار بار ایک کرتے رہے اور وہ بھی بار بار ایک بات کرتا رہے اور ہمارے سارے کہتے کان جو ہے نا وہ تانگا پڑ جائیں اس بات کو سن سن کے, اور خیر میں یہ ہو کہ ہم کہ چلو باہر پہ اسی کچھ اور ہی کریوں.
1: حضران یہ آخری سوال ہے, اسی پر کلوزنگ کریں گے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ غیر ملکی جن پارٹیوں میں آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟
5: میں اس پہ کامرس کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں مجھے نہیں پتا. میں نے آپ جیسے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, میں نے آج بھی کہا ہے کہ اب ایک غیر ملکیوں کو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں سٹینڈ لینا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کا میرے سے بڑے ہیں, آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کمیٹی کوئی بڑا سا انوینٹ کر سکی ہوگا اس پلیس پہ کر سکے نہیں. دیکھیں جہاں تک میرا نالج ہے انڈین یہاں پہ ہمارے بعد آئے ہیں, वो ने परमिशन लेके वो वॉल्स प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे, क्योंकि वो क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे। हम तो इधर अब कह लें करीबन 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। दान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
5: ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो के तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
6: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद है। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजापुर साहब, आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज मौसम जो है पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे, माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुम्हें तत्ती हवा आने लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती है। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न ब्रुस्को का कल जो बयान था इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है, मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स उड़े नहीं, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उड़े नहीं एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उससे बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सॉयवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज भी की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डेनमार्क के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेजर फेडरसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा कुरान बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं? जी अदनान
8: साहब, इसमें तो दो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है ये मुझे नहीं का पता कि उसको उसकी वो इतना एग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ मगर मेरे ख्याल से एग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मौत मेजर स्मिथ ने और इनके स्टॉय पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है और क्या कहते हैं बहुत सारे आयन और कानून क्या कहते हैं टूटते हैं। उसके अलावा ये भी थी कि कुछ इनके पास कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि जिसके अंदर पॉलिटिकल असाइलम जिनको मिला हुआ है उनके कुछ केसेस है और वो उस पर भी कुछ इनका क्या कहते हैं था कि ये लोगों को हम लाते हैं तो फिर ये होता है میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے اگریشن میں دی ہے, جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں, جہاں تک مجھے اس پہ پتا ہے, وہ اس طرح کا نیچرل کا بندہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بڑے کیا کہتے ہیں تلقات ہے, میرے ساتھ بھی اس کا ہوا ہے, ہمارا جو کونسلر یاسر اقبال بزرگ اس کے ساتھ بھی, اعجاز بہاری صاحب بھی جو کونسلر ہے ہمارے, اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس نے یہ کیوں اسٹیٹ بھی دیا, یہ تو ہمیں جب وہ ہم سے کبھی ملے گا تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں. پارٹی کی پالیسی یہ ہے جو میں آپ کو مینشن کر دوں, جو ہم نے الیکشن میں بھی کہا تھا اور جو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں.

0: यहाँ पे भी टैक्स हॉल पे कुछ चीज बैठे हुए हैं, टेनमस टेमो कार्ड पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमारे बंदे इस तरह से बात शुरू करती है तो इसका क्या नतीजा होगा। जो पॉलिसी हमारी जो थी इलेक्शन के अंदर वो यही थी जो हमने पॉल चेंज कराने की कोशिश की थी कि जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन गए हुए हैं उसको हम कुछ नहीं कहेंगे और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो क्राइम करते हैं और जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस मुल्क में उस पे पॉलिसी इनकी थोड़ी हार्ड लाइन है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है इस बाहरी, सबको पता है, आपको भी पता है शायद, आपके इसके अंदर लास्ट लुके भी है, और लास्ट लुके की आपको पता होगा कि 2001 से लेके 2011 तक उसकी कौन सी पॉलिसी थी। तो ये जो बहस जा रही है ना कि ये लिंपल से हो सकती है,
1: ठीक है
0: ये
1: ठीक
0: लिंपल
1: है
0: से भूल
1: अदनान
0: गई।
1: अदनान, ये ठीक है, लेकिन रीजन ये है कि जब हमारा जन्मा का गुण लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईन जो है, वो यहाँ पे मेंस का गाड़ी और फ्रीडम की बात कर रहा है, और जब आप अपने मिनिस्टरों को सुनते हैं, आप इंगा स्टॉयबे को देख लें, आप लार्स ल्यूके को देख लें, आप मॉडर्न मैसरस्मिथ को देख लें, आप मेडल फेरेस को सुन को देख रहे हैं कि ये इतनी इतनी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए ये एक ही ये बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी इससे अपना बुस्को ने किया है। मसला ये है कि क्या ये फोर्स केस पहनने गया कि एक बच्चा जो डेनमार्क में बॉर्न हुआ है, अगर उससे क्राइम होता है तो उसमें ये देखना जरूरी है कि एक वाइट है तो वो यहाँ का है और एक ब्राउन कलर का है तो उसको बाहर भेज दिया जाएगा क्या? ठीक है, इस बात को मैं समझता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे असाइलम लेता है या कोई बंदा यहाँ पे आकर जॉब लेता है और वो इस तरह के कत्लोगारत करता है, क्राइम करता है, बड़ा क्राइम करता है, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो तो हम कहते हैं कि भाई ये इसको पता था कि इस मुल्क का जो हालात है वो इस तरह के हैं और इसके साथ इंसाफ हुआ है, इसको वापस जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और अगर वो मिस कोई गलती से कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि उनसे कोई मर्डर हो जाता है या उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जो ड्रग्स का काम हो जाता है, कोई ऐसा उसके ऊपर इल्जाम आ जाता है, तो उसको उलिस करना, और डेनिस को जो है उसको वाइट आदमी को इन्होंने जो यहीं पर रखना है, तो इस फोर स्केल्स के ऊपर जो है वो बात लोग पूछ रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये फोर स्केल्स बहैंडलिंग क्यों है।
0: शाह साहब, इस पे तो ये देखिए, ये तो हम भी कहते हैं कि इस पे फोर्स के बहन नहीं होनी चाहिए, और इस पे हमने काफी क्या कहते हैं आवाज उठाने की कोशिश भी की है और क्या कहते हैं इस पे बातचीत भी करने की कोशिश की है, मगर मसला इसमें ये है कि इसके अंदर जी मसला ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं ना तो वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट हो जाते हैं, और मेजोरिटी इसीलिए हमने एक सोल्यूशन लाने की कोशिश की है, और हम हमेशा यही कहते हैं कि एक एक क्या कहते हैं एक बिग स्कॉल में एक चीज को ही लेके जाना चाहिए, और यही हमने एक जगह थे, हम डिबेट में थे, वहां हमने फिर वो बात की थी, और उस पर हमें अभी तक उम्मीद है इससे थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगी, मगर ये तो गलत है कि यहाँ का जो सिटी सेंटर और जो यहाँ पैदाइश हुई हुई है उसको भी इस करते, अगर वो देखे अब देखे क्या होता है। और आपको एक चीज मैं याद करा दूं, मुझे लगता है कि मौतन तुझको को जिस दिन ये उसने स्टेटमेंट दी थी ना उस दिन ना, ये जो आपको तो मालूम होगा कि इनने पिछले साल एक लॉ बनाया था 22-23 में भी कि उल रीजनिंग का, और उसी दिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक डिसीशन आई थी जिसके अंदर इनका वो जो आयन और कानून था वो एक किस्म का लागू नहीं होता, तो हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो कि हमने ये कानून बनाया है तो ये चालू नहीं हो सकता, मगर वो बाद में हमें पता चला था कि उसके अंदर वो जो कानून है उसके अंदर एक दो चीजें ने खुद क्या कहते हैं अब लाने लगे हैं, तो फिर आगे मगर देखते हैं कि लाते हैं कि नहीं लाते, ये बात सही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको मालूम होगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स है वो बार बार बोलता है कि आप वो कानून बनाए जो एक जैसा हो, और देखते हैं आप फ्यूचर में क्या होता है।

0: चाहिए, हमारी अलग करेंसी होना चाहिए, हमारा अलग पासपोर्ट होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, ये तो पाकिस्तान का जो मौकफ है कश्मीर के ऊपर उसको कमजोर करने की तो सबसे बड़ी कानूनी साजिश और क्या हो सकती है? कि आप देखें, हमारा एक मौकफ है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो करारदाद है उसके मुताबिक यहाँ पे प्लेबिसाइट होना है, और ये कश्मीर के जो लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि इन्होंने किसके साथ, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ इलाक करना है। तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं है। और अगर इतने यानी माजरीन की सीटों को खत्म कर देते हैं, उनका राइट ऑफ जो वोट है वो खत्म कर देते हैं, तो यकीनी तौर पे हमारी जो प्लेबिसाइट में स्ट्रेंथ होगी हमारे वोटर्स की वो तो कम हो जाएगी। तो ये फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को हमारे दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की डिमांड बड़ी सोची समझी, मैं समझा स्कीम के तहत या मनसूबे के तहत,
1: मनसूबे के तहत हो रही है। मलिक साहब आप काफ़ी देर से इंतज़ार में, मलिक खुशहाल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है, आप बहुत से इलाके सारे को बहुत करीब से जानते हैं।
2: जी शुक्रिया राय साहब, मैं सुन रहा था कर्नल साहब को भी, और माशाल्लाह कर्नल साहब बड़े वेल नॉलेज है और बड़ा अच्छा पेश कर रहे थे। जो जो जो बातें हम करना चाह रहे थे वो मेरे ख्याल में उन्होंने 2-3 मिनट में ये सारे को समराइज कर दिया, बड़ा अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इंडोज करते हैं हम इसको। इसी तरह अलीशान नवाज भाई ने भी जो जो बातें की, मेरा ख्याल है वो हम सब के मतलब दिलों की बातें हैं, वो हम करना चाहते हैं। और अलीशान नवाज जो है ना वो वेल कनेक्टेड भी हैं अदारों के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट लोगों के साथ भी, इवन एक्शन कमेटी के साथ भी इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। मैं थोड़ा सा जो राय साहब पीछे तारीखी पास मंजर की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा। शुरू में जो जो ये जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी जो है ना वो कहाँ से निकली, और ये क्योंकि आम बंदे कोई इस चीज का इलम नहीं है कि ये कहाँ से निकली ना, तो मैं वो थोड़ा सा पास मंजर में जाऊंगा पीछे। आजाद कश्मीर के अंदर 2022 और 23 में ना ये एक एक एक जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों ने मिल के ना जो है ना एक इत्तेजाज शुरू किया, जिसमें मरकजी लोग वहां के मकामी लोग थे जिन्होंने, जिसमें वकला तंजीमें थी, मरकजी अजमन ताजरान थी, ट्रांसपोर्टर्स थे, तलबा तंजीमें थी, सिविल सोसाइटी के लोग थे, टाई सरकारी अफसरान थे, समाजी अवामी कारकुन थे, इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो उन्होंने मतलब शुरू में ना आप यानी बिजली के बिलों के ऊपर इत्तेजाज शुरू किया, महंगाई के खिलाफ जो है ना उन्होंने इत्तेजाज शुरू किया। तो जो है ना वो इसका आगाज जो जो शुरू में हुआ वो उसका इसका नाम जो है ना वो ये एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं था। इनके मुतालबात जो शुरू में ये थे कि आटे की कीमतों में कमी आनी चाहिए, बिजली के रुखों में कमी आनी चाहिए, इसी तरह और तरह के भी बेशुमार इनके जो है ना वो मुतालबात थे, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजगार में इजाफा किया जाए, इसी तरह मंगला जो डैम की रॉयल्टी के लिए जो है ना इन्होंने आवाज उठाई। फिर इन्होंने कहा कि जी हमें गुजरा और ब्यूरोक्रेसी की मुराद को कम किया जाए, गैर जरूरी सरकारी अखराजात को कम किया जाए, करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसी तरह साबी अमल को बेहतर किया जाए, भर्तियों में मतलब जो मेरिट को लाया जाए, तालीमी दौरों में सहूलियात फराहम की जाए, इसी तरह खाली असामियों में तकर्री की जाए। ये सारी मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ मैंने चूंकि सोशल मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों को जो है ना उन्होंने इकट्ठा करके एक इत्तेजाज करना शुरू किया, और आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते बढ़ते जो है ना वो ये एक मतलब ना जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई। इनके वो मुतालबात तो ठीक थे 2025 में जब अनवारुल हक साहब की हुकूमत थी, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको बुला के बैठाया और इनके सारे मुतालबात को अप्रूव किया और इनको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम ये करते हैं। उसके बाद दोबारा जब ये फिर दोबारा ये लेके आ गए कि जी हमने ये करना है, और साथ ही जो इनके 38 मुतालबात थे उनमें से जो है ना वो जो आखिर पे जो यानी 36 गवर्नमेंट ने मान लिया, जब जो अभी अली शनवाल भाई बता भी रहे थे कि हमें भी ब्रीफिंग दी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आजाद कश्मीर की तरफ से, ओवरसीज कश्मीरियों को बताया गया कि भाई ये सूरत हाल है, आप भी अपना किरदार लग रहे हैं, और हमने किया कोशिश की, जिस तरह अली शाहनवाज बता रहे कि इन्होंने बातें की, हमारे इस वक्त आशमी साहब पाकिस्तान में मौजूद है जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमने ऑफर किए कि हम ओवरसीज कश्मीरी जो है ना वो इसमें बैठते हैं। लेकिन जो जो आखिरी जो जहाँ पे 1.5 लाख हुआ वो एक टोटली जो है ना वो आइनी मुतालबा।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: वो
1: देखिए एक
0: मशीन
1: बात,
0: चल।
1: राजू सर मैं एक मिनट बात करता हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब ये जो हरिकेन वेन्सा की समीये की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये इसकी मैं आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ जो मुझे इसकी पसंद आई थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी इसके साथ ना नवंबर में, जब मैं इसकी नवंबर और ये अब भी मेरी इसके साथ जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो ये एक जगह पे आई हुई थी और वहां पे हम लोग भी थे अपने कैंडिडेटों के साथ, और इसकी बहुत अच्छी बात थी और हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने इसे, मैं उधर खड़ा था, मैं दूसरी साइड पर खड़ा था, मुझे ही तो पता ही आई हुई है, क्योंकि इसको पता था कि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ और मैं उनका टीम का हिस्सा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने इससे एक सवाल किया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि ये देख, ये जो चीजें चाह रही हैं बड़ा मुश्किल हालात है। तो इसने मुझे वही आपकी बात है, जब आप जो टीम की तरफ, आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो यही मुझे इसने कहा, कहती है मसला ये हो जाता है कि हम लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं ना कम्यूनों के अंदर और हमारे रेस्पेक्टेंट चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा को ये नहीं मालूम होता कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलने होते हैं और कैसे चलने होते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको शायद सब बता दूं, हम अभी एपिसोड में बैठे हुए हैं और हमारे जो आपकी बात सही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है, और यही एक फैसला होता है और इसका होता है। पिछले साल 2025 का जो बजट हमने बनाया था ना, और जो जिसके बारे में था, वो हमें फूलियां ना मिलती है जो होती हैं लेंस कम्यूनल्स लेंस वाली से, तो हमारा बजट पूरा नहीं था ना। और मैं आपको यही कहूं कि अब इनकी जो कोशिश है कि यही लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह ये स्ट्रक्चर बन रहा है, हर जगह क्या कहते हैं सड़कें खुली हुई हैं, पता नहीं बंदा जा रहा एक जगह होता है तो पता चलता है ये बंद है। ये इनकी, ये पता नहीं ये भी पॉलिसी है और क्यों है ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2000, अभी तक तो अब यही पता है कि 2027 के जो बजट्स हैं वो बेस्टा इनकी कम्यूनों के, अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मिसाल नजर नहीं आ रहा, मगर अभी ये क्या कहते हैं, ये जब गवर्नमेंट बैठेगी और कम्यूनल और वैक्यूम्स के बजट बनाएगी, तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है, और कितना क्या कहते हैं कम्यूनों के अंदर चेंजेस आते हैं,
0: असल
1: क्योंकि
0: बात तो अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनियल निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने, अब जो मेला लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
1: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ एक दिन, तो मैं खुद फंसा हूँ एक दिन, तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठा हुआ है सोशल डेमोक्रेट को, मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोग कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो, कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है, तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हो आप ये, मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल लेना। और ये एक मसला है कोपनहेगन के अंदर, काफी मसला है, और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सिकंदर भाई
0: नहीं, आप
1: हो,
0: ट्रांसपोर्ट के
1: कासा है।
0: वजीर से भी तो बात करें ना। असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं जो ना, वजारतें ले लेते हैं, इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
1: राज साहब प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना, लोकल जो होता है वो कमून के हवाले में होता है, वो कमून ने खुद क्या कहते हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। और जब जितनी देर तक कम्यून ही सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी, उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ी होती है। कोपनहेगन में मसला ये है कि कोपनहेगन के अंदर एक पार्टी है आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं,

0: उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे, बसों में, ट्रेनों में ये घुसे, और वो मेजॉरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी, 2025 में भी, 2021 में भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे वो, तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा, क्या कहते हैं, होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी, क्या कहते हैं, वेयर अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उनने, ये क्या कहते हैं, नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं, तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपेनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्टी बनाई जाए, तो क्या कहते हैं, कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोपेनहेगन की इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है, क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं, ये कुछ दफा ब्रॉनबी में मैंने देखा मैचों पे, और ग्लोव तो कुछ देखा, और मैंने पेबिनसुला में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्होंने बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं माजा चाहता हूँ, मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा। मैंने, आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि अपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम जब हम पता चलेगा कि मॉडल सिचुएशन कैसे
1: ज़रा यहाँ
0: है।
1: सिस्टम से काम होता था। अदनान, आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल मिनिस्टर की ओल ओ ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
0: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट, जो उसका, उसकी पार्टी का वो बैठेगा, वो इतनी देर तक उसने ये इसलिए, और राजस्व ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं, वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें थी मेरे ख्याल से उनके पास, अब वो आए थे अंदर 9 या 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर, क्या कहते हैं, फिर उनके जो काम का लोड होगा ना दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो, क्या कहते हैं, उनका आइडिया अच्छा है, और एक मोटी, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मैथियस सिपाही, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के आया उधर बादशाह के पास, तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस, और पैदल चल के जब गया ऑफिस तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो, तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा सुबह, आपको बान की बात होगी कि वो आज सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया गाड़ी
1: इसलिए कि उसको गाड़ी
0: के
1: पे
0: अंदर,
1: जाए तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
0: नहीं पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है, क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, वो कहता है मैं क्यों जाऊं, कहता है मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत ही भी इसलिए छोड़ी है कि वो अपना, क्या कहते हैं, वो लोकल काम करना चाहता है, वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिस्त्री का काम करूंगा, जब मैं कूपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम कर सकूंगा, और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा, और
1: तो
0: ज्यादा
1: चलें
0: मिसालों को
1: अदनान
0: क्या
1: आते हैं,
0: करूंगा।
1: शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार साहब देखिए, नहीं पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना, तो एब्रिस्लोन का जो एब्रिस्लोन से बंदा निकल गया है, रहता मचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना, वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है, एक जजीरा बना होता है, जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो गडखेर मिनिस्टर लाए थे, वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे अब से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एमिसलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एमिसलोन से, क्यों नहीं आ
1: नहीं
0: सके?
1: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साम हम साम आप बात करेंगे, मतलब
2: सोशल अपना रेडिकल बेंसन ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे। तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी असूली तौर पर, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की डॉट सीरत सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट आया वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, ग्रुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इस पर अगर आप बात करते हैं साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशन से करते हैं।
0: शाह साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो अंडे लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन वो दो हिस्से में होती थी रैक्यूम, अब वो एक रैक्यूम में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दो तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। या तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं चार साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुर्बा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल मेकटी जॉब होती है ना वो इसने तीन चार मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको बात कर देता हूँ, हमारी बात हो रही थी कमोनिटी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि दो या तीन साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री में तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये मार्चन देखो खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, इसको ली है, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, की मीटिंग जुमे को तो काम ही करती है, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपको उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूगो में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: अच्छा साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपसे रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंके फलकेली उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं हम तो वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है कितना काम करता है इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाई स्टार्ट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाई स्टार्ट ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो अब तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते थे। आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो हमने ये आपकी आवाज से सुना है वो सुना है। मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं मुझे गाय पूछते हैं मुझे कहते हैं। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं
0: मैं तो ये
1: मेहरबानी
0: सारा
1: आपकी, आप टाइम निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देख के राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया तो आपका कभी भूलूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है मेरी बेटी है वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं तो वो यही मैं कहता हूँ कि आपको जो गाइडलाइंस है आप लोग मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है, इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं अभी तो मैंने देखा नहीं है कुछ देख
2: यही
0: पा
2: यही
0: रहा
2: यही
0: हूँ
2: अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे बोरिस सेल्स के बड़े निकाल सकते हैं सब कुछ। तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूं कि आप अवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलहदा चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप एक बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चार साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे तेजपाल के पीछे के लिंक्स आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटरकेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो
1: चले, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ।
2: अदनान, बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जीशान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का, हम लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको,
1: अल्लाह
2: हाफिज।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
2: जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को और शाह साहब जो हैं वो सवाल जवाब की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।